फिर जिन लोगों ने नादानी से बुरा काम किया फिर उसके बाद तौबा की और नेकुकार हो गए, तो तुम्हारा परवरदिगार उनको तौबा करने और नेकुकार हो जाने के बाद बख्शने वाला और उन पर रहमत करने वाला है।

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

शाक मानिंद ये तपते मैदान।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातो तफरी का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

0: Righto. In the name of Allah, the merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum. And of course, assalamu alaikum. Ahle Pakistan. Janab se mukhatib aapka host, aapka dost, DJ Sahil signing in. Alright, Janab, kaise aap tamam log yakin theek thaak hain? Ivane fit hai, maze mein hai, khoob enjoy kar rahe apni zindagi ko. Well, bahut sare log jo hai wo intezar kar rahe honge ki aaj Saturday hai, Rebecca ne bhi aana hai, Sahil ne bhi aana hai. और रिबेका जो हैं वो एज यूजुअल उनकी वही गाड़ी के इश्यूज इतने 100 मसाइल होते हैं वो नहीं आ सकी
1: तो फिर अब हम क्या करेंगे रिबेका नहीं आई तो फिर उसकी जगह किसको बुलाएं
0: कोई माइक काम नहीं कर रहा
1: तो उसकी जगह किसको बुलाएं उसकी जगह किसको बुलाएं ये काम कर
0: ये बिल्कुल सही काम कर रहा है
1: इसको पीछे कर दो जी रिबेका की जगह किसको बुलाएं आज साहिल खान
0: रिबेका की जगह जो है वो हम बुला लेते हैं किसी
1: सेलिब्रिटी रिबेका
0: सेलिब्रिटी रिबेका
1: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स होप यू डूइंग वेल ये आदमी चाहता है मैं छुट्टी कर लूं ये जो मुझे कोई
0: बड़े डबल पैसे दे देंगे मुझे
1: चन्नी ठन्नी मिलती है मुझे ना मिले असल में ये वो सीन हो रहा है ना कहते हैं दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत
0: तकलीफ होती है बड़ा तकलीफ
1: दोस्त को ये जो चन्नी ठन्नी मिल जाएगी तो आपको दुख होगा
0: बहुत ज्यादा इसको क्यों मिल गई किसी और को मिल जाती गुम हो जाते इसको क्यों मिल गई अच्छा वैसे ये है
1: ना
0: ये है
1: लोग करते हैं ना
0: लोग करते हैं मेरे साथ ये वाला मसला ऐसा नहीं मैं किसी कामयाबी से नहीं मतलब ये कि मुझे तकलीफ कहाँ होगी कि मतलब ये मेरा दोस्त है और ये किसी और से ज्यादा फ्री हो रहा है मतलब उसके ज्यादा अच्छी दोस्ती तो मेरे अंदर ये है जलसी ये वाली
1: okay.
0: मेरे साथ हो जाता
1: है दैट यू एक्सेप्टेड इट साहिल अब मुझे ना आपकी अच्छी बातें फील होने लगी मुझे लगता था आप में ना कोई अच्छी बात है नहीं लेकिन मुझे लगता है फन अपार्ट लेकिन अब मुझे लगता है आप एक अच्छे खासे इंसान हैं अच्छा खासा क्योंकि रकबा
0: मैं पहुंच गया सेलिब्रेट करने की जरूरत नहीं है
1: मेरे देखे लिसनर्स को नहीं पता वो कहेंगे कि रिबेका ने साहिल से बात कर ली हमसे बात नहीं की और मैं फर्क नहीं करती आप में और अपने लिसनर्स में
0: जी
1: तो ये जो मैंने अच्छा तो कहा है अच्छा मीन्स काइंड वेरी नोबल पर्सन ये जो मैंने खासा कहा है खुले दो हाथों से खासे का मतलब होता है आपके बॉडी का रकबा यानी फिजिक आपकी तो आप लंबे और चौड़े आदमी वो जो हमारे एक लिसनर ने
0: शेमिंग कर रही
1: अच्छा लड़कों बॉडी शेमिंग करे लड़कियों को कहते रहते हैं पतली सुखी मोटी
0: तो हम इसलिए कहते हैं कुछ खा पी लेंगे
1: नहीं भाई हम मुझे नहीं पता मैंने खाना है
0: देखिये खवातीन जो है वो खूबसूरत दिखे वो अच्छा लगता है मर्द हजरात बेचारे जैसे भी देखे वो चल जाते हैं
1: बेचारे मर्द हजरात खवातीन बेचारी नहीं खैर हम बेचारी नहीं होती प्लीज लेडीज कभी भी ये नहीं सोचना कि हम खवातीन बेचारी हैं लेकिन व्हाट आई बिलीव वैसे ये बड़ी अच्छी आपने बात की है ना लोग फॉरन से बॉडी शेमिंग पे आ जाते हैं दैट इज समथिंग वेरी अलार्मिंग सो मुझे
2: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: Free socks.
1: And now you are tuned into
2: FM 101.
3: FM 101.

0: Socks. And now you're tuned into
1: FM 101.

0: सुबह के 9 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। आसफा महफूज से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने ईरान के सदर के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद की अहमियत पर जोर दिया है। अमीर कतर ने खित्ते में अमन के लिए नुमाया किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। हुकूमत ने आज से एक हफ्ते के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया है। फुटबॉल आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में रात लॉस एंजलिस में स्पेन ने बेल्जियम को 1-1 में 2 गोल से शिकस्त दे दी। और अब खबरों की तफसील।
1: We'll be back after this.

0: पीछे पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
1: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
1: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: This is FM 101.1.
5: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: This is FM 101.
1: क्या कह रही थी तुम? एक बार फिर बोलो।
2: नहीं रह सकती ना मैं तुम्हारे बगैर। एक दिन, एक घंटा, एक मिनट भी नहीं।

दिन के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने ईरान के सदर के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू में इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद की अहमियत पर जोर दिया है। अमीर कतर ने खित्ते में अमन के लिए नुमाया किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की क़यादत का शुक्रिया अदा किया है। हुकूमत ने आज से एक हफ्ते के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल किया है। फुटबॉल आलमी कप के दूसरे क्वार्टर फाइनल में रात लॉस एंजलिस में स्पेन ने बेल्जियम को 1-1 में 2 गोल से शिकस्त दे दी।

0: पीछे पीछे पीछे।
1: तुम स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
2: आगे जाऊंगी तो सबको
1: एगो योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
3: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
1: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एगन योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
4: दिस इज FM 101.1।
5: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: देखिए ड्रामा सीरीज फसाना मार्ट का जुम्मा से इतवार रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुनते रहिए FM 101 101 101।

खवातीन और नाज़रीन, सबात पार्टिन और रैक स्टार आपको वाइब की अलग ही दुनिया में लेके जाने वाले हैं, और ये वाइब आपको हिल मिल के गिरने पे मजबूर कर सकती है। बराए मेहरबानी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। किसी भी वाइबी नुकसान की जिम्मेदारी

there's music, and then there's magic. One Above, FM 101.

0: FM 101, आपके मन की आवाज, आपके दिल की धड़कन।
1: Continuous hits.

0: इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे,
2: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: दिस इज FM 101.1।
4: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: Step into the world of women and talk about everything that matters to you, from fashion to feelings and everything in between. Welcome to Ladies Lounge with your favorite RJ, Nimra Aruj. आप लोगों की उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे, जहां भी होंगे बहुत खुश होंगे और जिंदगी को बहुत बहुत बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप मेरा पूछते हैं तो मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एक दफा फिर से आप लोगों के साथ हूँ। टाइम हो चुका है 11:12। वाह जी वाह, टाइम कितना मजे का है, 11:12। और आज डेट हो गई है जुलाई की 11 और सन है जी 2026। प्रोग्राम का नाम है लेडीज लाउंज। लेडीज लाउंज का मजा जो है ना उस टाइम आता है जब दो खवातीन मिलकर बैठी हो और मजे मजे की जो है ना वो चुगलियां कर रही हो। पता लगता है यार लेडीज लाउंज हो रहा है, ऑफ एयर भी और ऑन एयर भी। बहरहाल जी बहुत सारी बातें, बहुत सारी गपशप, और आज ना थोड़ा सा मेरा शो का जो है ना थीम आप कह लें, या आज मैं बहुत सीरियस थी। मतलब परसों से जो है ना थोड़ा सा मेरा मिजाज बड़ा सीरियस चल रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी, कुछ इर्द गिर्द में जब आप न्यूज़ देख रहे होते हैं, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ रही होती ना, तो आपका दिल उदास हो रहा होता है। तो कुछ ऐसे ही सिचुएशन मेरे साथ थी, और मैंने ना काफ़ी सारी चीज़ें टिप्स पर रखी हुई थी कि यार इस दफ़ा मैंने शो के लिए जाना है ना, तो मैंने इस हवाले से भी बात करनी है, फिर इस हवाले से भी बात करनी है। और कल रात को ना थोड़ी देर के लिए मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ बैठी हूँ, ऊपर मौसम अच्छा था तो हमने सहन में चारपाई डाल ली और हम लोग बैठ के जो है ना वो थोड़ी सी इधर उधर की गपशप करने लग गए। तो वहाँ पे जो है ना कुछ चीज़ें ऐसी सामने आईं, कुछ उसने अपनी फ्रेंड्स के हवाले से कुछ बातचीत मेरे साथ की, तो मैं ना सर पकड़ के बैठ गई। और फिर उसके बाद मैंने उसको कहा, मैंने कहा हर दफ़ा जो है ना मुझे अपने शो के लिए जो है टॉपिक अपने रेलिवेंट ही इधर उधर कहीं से मिल जाता है, और चीज़ें जो है ना वो मुझे मेरे पास इतना कुछ इकट्ठा हो जाता है कि मेरा दिल करता है कि 2 घंटे का शो ना 3 घंटे का हो जाए और मैं सारी अपनी बातें करके जाऊं। मेरा ये भी दिल करता है कि मैं खुल कर बोल के जाऊं, लेकिन जी आपको पता है कि फिर कुछ चीजों की वजह से हम इतना खुलकर नहीं बोल सकते जितना हम ऑफियर बोल लेते हैं। तो बहरहाल वो सारी बातें मेरे माइंड में हैं और मैं ज़रूर करूंगी, शायद मेरी बात करने से जो है किसी की कहीं कोई आसानी हो जाए। कोई जो है ना जो हम बिला वजह अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल हमने बनाया हुआ है, शायद कोई पहल कर ले इस चीज़ में कि जो फजूल किस्म की रसूमात हमने बनाई हुई हैं, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे वो अल्लाह माफ़ करे किसी के घर कोई फौदगी हो गई हो, तब भी बहुत सारी रसूमात ऐसी हो जाती हैं जिससे ज़िंदगियाँ बहुत मुश्किल हो जाती हैं, और वो बिला वजह की हैं जिनको हम जोड़ देते हैं अपने दीन के साथ, अपने मज़हब के साथ। तो मैं हैरान होती हूँ कि यार कहीं कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, हमने बिला वजह अपने लिए ना बड़ा मुश्किल खुद से बनाया हुआ है चीज़ों को। एनीवेज जी सारी बातें करेंगे आज आप लोगों के साथ। 11:14 हो गए हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ ढेर सारी गपशप करने वाली हूँ, और मेरे साथ दीजिएगा। आप लोग साथ किस तरह से देंगे? साथ आप देंगे फेसबुक पर हमें ज्वाइन करके। फेसबुक पर हमारा ऑफिशियल पेज FM 101 लाहौर का, और उस पर हमारी पोस्ट अपडेटेड है। वहाँ पर जाएंगे, हमें करेंगे कमेंट और प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा जी 4471 पर आप लोग हमें मैसेज भी कर सकते हैं। 4471 पर SMS करने के लिए आपने अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाना है, और वहाँ जाकर लिखेंगे 101, एक अदद देंगे स्पेस, अपना नाम लिखेंगे, मैसेज लिखेंगे और उसको सेंड कर देंगे 4471 पर। अभी हम जो गाना प्ले कर रहे हैं, ये सडन अभी रास्ते में ना आते हुए एकदम से मेरा हाथ लग गया था। YouTube पे मैं गाने सुन रही थी कि मैंने कौन कौन से गाने चलाने हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर मैंने इसका ओरिजिन फाइंड किया तो पता लगा नहीं, ये AI सॉन्ग है और पाकिस्तानी है, जिसने भी बनाया है बहुत अच्छा बनाया है। मैंने कहा क्यों ना आज अपने प्रोग्राम का आगाज़ जो है ना इस सॉन्ग के साथ किया जाए। AI ने कमाल कर दिया, अच्छा भी है अगर हम इसका इस्तेमाल पॉजिटिव करते हैं तो।
1: रातां चन्न नाल गल्लां कर,
0: इंजॉय कीजिएगा इस खूबसूरत से, इस मीठे से गाने को। इसके बाद वापस आती हूँ, स्टिक अराउंड टू FM 101 जो कहते हैं निमरा रोज।

ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. आपको खुशामदीद कहते हैं. 11 बज के हो चुके हैं 47 मिनट और मेरे साथ कौन कौन मौजूद है फेसबुक पर मैं आप लोगों को जल्दी से बताती हूँ. हमदुल्ला भाई हैं, हमदुल्ला मलाखेल हैं हमारे साथ, कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम. मैं हूँ हमदुल्ला मलाखेल फ्रॉम क्वेटा, वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच जी. वालेकुम अस्सलाम. हाँ, इसका अपना ही मजा है. ऑलराइट जी, अकबर खान हैं जी कराची से, अस्सलाम वालेकुम. दिन बखैर पाकिस्तान. वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया अकबर खान आपका. और ढेर सारे मैसेजेस कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया. मलिक मोहम्मद आदिल हैं जी, आरजे निमरारूज जी जी मैं ही हूँ. इमरता चौधरी साहब हैं जी, अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं. वालेकुम अस्सलाम. और कह रहे हैं जी शमसी रेडियो लिसनर क्लब लाहौर की जानिब से खुशामदीद कहते हैं हम आपको. खूबसूरत शो करने पर FM 101 रेडियो लाहौर की टीम को मुबारकबाद पेश करते हैं. ओके ओके ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच जी. आपके इतने लंबे मैसेज का बहुत शुक्रिया. अब्दुलरहमान हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया. वेल, आज इतने थोड़े से कमेंट्स क्यों हैं जी? कहाँ हैं मेरे तमाम लिसनर्स? अब तो मैंने छुट्टी नहीं की, लास्ट वीक भी मैं आई थी. क्या कर रही हैं गर्मी में? मेरा ख्याल है एसी वाले कमरे में जो है ना वो दरवाजे कान छान सब बंद करके आप लोग सो रहे हैं, ऐसे ही लग रहा है मुझे. खैर जनाब, हाँ, हमारे पास ओके ठीक हो गया जी. थैंक यू सो मच. आप लोग भी अगर हमारे साथ शामिल होना चाह रहे हैं, जिन लोगों ने अभी अभी FM 101 ट्यून इन किया है, उनको हम कहेंगे वेलकम, वेलकम टू माय शो एंड वेलकम टू FM 101. अगर आप लोग भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं. इसके अलावा 4471 पर मैसेज कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? कमेंट किस तरह से करेंगे? आपने जाना है FM 101 लाहौर का ऑफिशियल पेज है फेसबुक पर, वहां जाकर हमारी पोस्ट पर आप कमेंट करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं. और 4471 पर किस तरह से शामिल हो सकते हैं? आप जाएंगे अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन पे और वहां जाकर लिखेंगे 101, एक अदद देंगे स्पेस, अपना नाम लिखेंगे, अपना मैसेज लिखेंगे और उसको सेंड कर देंगे 4471 पर. तो जनाब 11 बज के हो चुके हैं 49 मिनट. अच्छा, एक चीज़ और थी जो अभी हमारे इर्द गिर्द जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये मसला चल रहा है बच्चों के हवाले से, बच्चों के साथ जो मामलात चल रहे हैं उस हवाले से. और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा पेनफुल है, बड़ा तकलीफ दे है जो मामलात चल रहे हैं, जो हम न्यूज़ में सुन रहे होते हैं, जो इर्द गिर्द हमारे चल रहा होता है, बड़ा वो आप कहें. मेरा ख्याल है कोई भी माँ होगी ना उसको तकलीफ़ होगी, किसी के भी बच्चे के साथ कोई मिसहैप हो जाता है इस तरह का खुदा ना खास्ता, तो हर माँ को तकलीफ़ होगी. और इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि नहीं, हमें हमारे पास ये माइक है, इस माइक की मिसहैप हो जाता है इस तरह का खुदा ना खास्ता, तो हर माँ को तकलीफ़ होगी. और

मेरे बच्चों की जो मतलब पहले पुराना स्कूल था, उस स्कूल की प्रिंसिपल ने एक दफ़ा बुलाया और उन्होंने कहा कि जी आप अपने बच्चे को ना एक्स्ट्रा पैम्पर कर रही हैं। हालांकि मैंने अपने बच्चों को मेरा ख्याल है बड़ी स्ट्रिक्टनेस में रखा है और उनके साथ मैं इंजॉय भी करती हूँ, उनको अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, सारा कुछ है, लेकिन जो एक माँ वाली स्ट्रिक्टनेस होती है ना वो भी मैंने रखी हुई है क्योंकि वो ज़रूरी है। लेकिन मैं अपने बच्चों की बात सुनती ज़रूर हूँ। बच्चे स्कूल से आए हैं, कोई कंप्लेन कर रहे हैं, किसी के बारे में कोई बात कर रहे हैं, आज फलाने बच्चे ने ये कह दिया, फलानी टीचर ने ये कह दिया, मैं उस पर कोई रिएक्शन शो नहीं कराती, लेकिन मैं अपने बच्चे की बात कम्प्लीटली सुनती हूँ कि यार उसको पता लगे कि हाँ मुझे, क्योंकि मैंने नहीं सुनना था और किसने सुनना है। एटलीस्ट बच्चे को पता हो कि यार कोई भी ऐसा मौका आएगा, कोई भी ऐसी चीज़ आएगी तो हमारे वालिदैन, हमारा कोई बड़ा, कोई बहन भाई, कोई मतलब आपकी जिस पे भी बच्चा कंफर्टेबल होता है, जिसके साथ भी आप आपकी बात को सुनेगा, आप पर यकीन करेगा, तभी बच्चे जो है ना घरों में अपनी बात बताते हैं। अदरवाइज़ बच्चे फिर उसको छुपाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो आपने अपने बच्चे को एतमाद ज़रूर दिलाना है कि बेटा कोई भी बात होती है पेरेंट्स से बढ़ के कुछ नहीं होता, ठीक है। कोई बहन भाई, कोई चचा, ताया, मामा, ये रिश्ते बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं, मैं इनको बहुत मानती हूँ, लेकिन जो आपके पेरेंट्स आपके लिए डिसीजन लेते हैं, जो आपके पेरेंट्स आपके लिए सोचते हैं, आपकी फ़िक्र करते हैं ना, वो दुनिया को कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अपने बच्चों को ये कॉन्फिडेंस ज़रूर दें कि आपको लगता है कि कहीं कोई मसला आ रहा है, कहीं आप किसी शख्स से डर रहे हैं, कोई आपकी टीचर आपको हरास कर रही है, कोई आपको जो है ना कोई बंदा, कोई राह चलता बंदा, कोई आपका, आप जिन वैन्स पे जाते हैं, रिक्शे पे जाते हैं, वो आपको हरास कर रहे हैं, कोई भी अनयूजुअल चीज़ आपको लग रही है, आपने मम्मा के साथ जाके या बाबा के साथ आके ज़रूर शेयर करना है। जब आप अपने बच्चे को ये कॉन्फिडेंस देते हैं ना, तो बच्चे अपनी हर बात अपने माँ बाप ही को बताते हैं, ठीक है, वो आपसे कतराते नहीं हैं। और फिर उसके बाद उसकी बात सुन के आपने ज़रूर डिसाइड करना है कि भाई मामला आखिर में है क्या। और इस हवाले से मुझे लगता है ये तो है ना पेरेंट्स की हद तक कि भाई अपने पेरेंट्स, हम बीइंग अ पेरेंट हम क्या कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन अगर हम बात करें स्कूल कॉलेजेस की, तो स्कूल कॉलेजेस में भी, स्पेशली स्कूल में, छोटी क्लासेस में जो है ना ये अवेयरनेस प्रोग्राम ज़रूर होने चाहिए। इस तरह के मेरा ख्याल है कि हर स्कूल को, हर इदारे को जो है ना बच्चों के हवाले से इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम ज़रूर अपने इर्द गिर्द जो है वो इस तरह के ऑर्गेनाइज़ करने चाहिए, ताकि बच्चों को वहाँ से भी जो है ना अवेयरनेस मिले। बच्चों को बताओ कि यार आपकी टीचर जो है ना उस टाइम पे, जब इस टाइम आपके पेरेंट्स मौजूद नहीं हैं, आपकी टीचर आपके साथ मौजूद हैं, जिनको आप कोई भी इस तरह की बात बता सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है मेरे बच्चों का जब स्कूल मैंने चेंज करवाया, तो मैं तीनों की ब्रांचेस जो है ना वो अलग अलग हैं, बेटे की अलग है, बड़ी बेटी की अलग है, छोटी की अलग है। और जब वो बच्चियाँ स्कूल जाना शुरू हुई ना, तो मैंने बड़ी वाली माशाल्लाह बहुत समझदार है, उसको भी शुरू से ही मैंने इस तरह समझाया हुआ था, अब बारी आती थी छोटी वाली की, तो मैंने छोटी वाली को भी, इवन बेटे को भी, सिर्फ बच्ची को नहीं, मैंने अपने बेटे को भी वैसे ही समझाया कि बेटा आपको कहीं पर भी कुछ महसूस होता है ना, और आपने मतलब किसी अकेले क्लासरूम में नहीं जाना। जब वो पहले दिन स्कूल जा रही थी, सबसे पहले मैंने उसको ये बात की, मैंने कहा आपने अकेले किसी क्लासरूम में जहाँ पे कोई बच्चा मौजूद नहीं है, स्कूल के किसी ऐसे कोने में नहीं जाना जहाँ पे कोई मौजूद ना हो, कोई आपको वहाँ पे गार्ड है, कोई टीचर है, इवन फीमेल्स भी, कोई आपको लगता है कि नहीं ये आपसे एक्स्ट्रा फ्री हो रहे हैं, आपने किसी को हाथ मिला के सलाम अलैकुम नहीं करना, ठीक है, मैंने ये तक रोका हुआ है, क्योंकि सलाम जो है ना वो मुंह से भी पहुंच जाता है, ज़रूरी नहीं होता कि आप हाथ मिलाएं। जो हम छोटे बच्चे बच्चियों को कहते हैं ना, जी फलाना अंकल है, फलानी आंटी हैं, तो जी आप हाथ मिलाएं, प्लीज़ शेक योर हैंड, इस तरह की बात कर रहे होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें ये नहीं करनी चाहिए, हमें बस ये कहना चाहिए कि बेटा अस्सलाम वालेकुम करें, ठीक है। ये मेरा ख्याल है कि तरबियत काफ़ी होती है कि आपका बच्चा किसी आए गए को देख कर अस्सलाम वालेकुम कर ले, ज़रूरी नहीं है कि हाथ मिलाया जाए। तो बहरहाल ये एक बड़ी मतलब चीज़ है अपने बच्चों को अवेयरनेस देने के लिए, उनको बताने के लिए कि इस तरह से जो है ना आपने करना है। आप जब नई जगह पे जाएं, तो वहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई शख्स आपको डराने की कोशिश कर रहा है, कोई आपको कहता है कि जी मामा को ना बताना, बाबा को ना बताना, मैं आपको कैंडी दूंगा, मैं आपको चॉकलेट दूंगा, और आप खामोशी से जो है ना उसकी बात सुने, ये ऐसी कहीं पर भी जो है ना वो कोई चीज़ नहीं होती है। अच्छा, अभी मैंने एकदम घड़ी की तरफ नज़र डाली है, 11:58 हो रहे हैं और न्यूज़ ब्रेक आ रही है, उसके बाद मैं अपनी बात कंटिन्यू करती हूँ, ठीक है, और फिर वापस आते हैं, अपने इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। और लाइव कॉल्स में मैंने आप लोगों से आज पूछा है, क्या आपका कोई ऐसा प्लान जो पिछले 3-4-5 महीने से जो है ना आप बना रहे हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, ऐसा कुछ है आपके साथ, ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ।

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। सदर मुमलिकत ने मंगोलिया के कौमी दिन के मौके पर उसकी हुकूमत और आवाम को मुबारकबाद दी है। नायब वजीर आजम ने मुल्क के जुग्राफियाई मोहल्ले वकू से भरपूर फायदा उठाने के लिए बंदरगाहों के दरमियान रसाई और राबितों को बेहतर बनाने की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर आजम की टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत पाकिस्तान की बंदरगाहों में बेहतरी के सम्राट शुरू हो गए हैं।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

Alright, welcome back. Once again, आपको खुश आमदीद कहते हैं, मुझे कहते हैं निमरा अरूज और आप लोग सुन रहे हैं FM 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर. एकदम से मुझे याद आया यार, आज तो मैंने नई तस्वीर लेके अपने स्टेटस पे नहीं लगाई, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो है ना वो तस्वीर ले लेते हैं और उसको स्टेटस पे अपडेट कर देते हैं. यू नो, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है. अच्छा, बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं, वो मौका महल कुछ हो ना हो लेकिन उनका स्टेटस जो है ना वो बड़ा बरकरार होता है. और मतलब कुछ भी हो जाए, आंधी हो जाए, तूफान हो जाए, शादी पे हैं, गम में हैं, कुछ भी हो, उनका स्टेटस जो है ना वो जरूर लगता होता है. ऐसे ही कुछ लोग जो है ना वो मेरे इर्द गिर्द हैं और मैं बड़ा इरिटेट होती हूँ. फिर मैं हैरान होती हूँ कि यार, वैसे आप कह रहे होते हैं कि जी आपके पास टाइम नहीं है और लेकिन स्टेटस बनाने का, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने का ना बड़ा टाइम लगता है. मुझे याद है अभी कुछ अर्सा पहले जो है ना मेरे कुछ कुलीग्स ने कहना शुरू किया था कि आप अपना ना यूट्यूब चैनल बनाएं, और मैंने बनाया भी लेकिन उस पर ना मैं कुछ ही दिन अपलोड कर पाई पिक्चर्स, क्योंकि सॉरी पिक्चर्स कह रही हूँ वीडियोस, क्योंकि मुझे ये लगता था मुझे कुकिंग का जैसे शौक है तो मैंने उसमें कुकिंग की भी वीडियोस डाली और मैंने अपनी रैंडम जो मतलब ड्यूटी पे जा रही हूँ कुछ जो भी एक आपकी डेली व्लॉगिंग वाला सिस्टम होता है ना वो चीज़ मैंने की. बट वो मुझे बड़ा मुश्किल लगा. मैंने कहा यार, जो काम मैंने आधे घंटे में या घंटे में करके फारिग होना है

तो जनाब मुझे मुझे बड़ा फील हुआ। मैंने कहा यार ये तो मतलब एक घंटे का काम है, अगर मैंने एक हांडी या कुछ भी जो भी कुछ बना रही हूँ मैं एक घंटे में पूरी कर लेती हूँ ना, तो उसके साथ मुझे लगता था कि मुझे चार चार घंटे लग जाते हैं। और वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, बड़ा मुश्किल था। मुझे लगता था यार टाइम वेस्ट है इसलिए जो है ना मैंने फिर उसको छोड़ दिया। और अब मुझसे सारे पूछते हैं कि यार अब आप अपलोड नहीं करती हैं कोई, आपने नया व्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी ऐसा नहीं किया। मैं कि यार बड़ा टफ काम है ये, मैं कर ही नहीं सकती, मेरे पास जितना काम होता है या मैं जितना बिजी होती हूँ ना अपनी लाइफ में उसमें तो है ना वो आप कर ही नहीं सकते। ये काम है बिल्कुल आप वेले हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं या आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि आपने वीडियो बना ली और उसके बाद उसकी एडिटिंग के लिए या उसमें कोई मिक्सिंग करनी है उसके लिए आपने एक अलग से एक अपना प्राइवेट सेक्रेटरी रखा हुआ है, फिर तो आप ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। बहरहाल जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से और बच्चों के हवाले से कि किस तरह हम उनको अवेयरनेस दे सकते हैं, किस तरह हम उनको मुश्किल वक्त से बचा सकते हैं। अल्लाह ताला उन सब बच्चों की हिफाजत करे, सबके बच्चों की बच्चियों की हिफाजत करे। इसमें कोई मेल फीमेल वाला आंसर नहीं है, बस बच्चे बच्चे होते हैं और सबके प्यारे बच्चे होते हैं। और बड़ा दुख होता है जब इस तरह की न्यूज़ सुनने में आती है, इस तरह के मामलात, और ये अब जितना जल्दी जल्दी हो रहा है कि दिल ना बड़ा डरता है कि यार हम अपने बच्चों को कहाँ निकालें, ना तालीमी इदारे महफूज हैं, आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ने के लिए भेजें, ना घर महफूज हैं। तो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि अब फिर पॉजिटिव यही है कि आप अपने बच्चों को अपनी आँखों के सामने ही बिठा के रखें, जो उनको करवाना है घर ही बुलाएँ और वहीं पर रखें। लेकिन हर एक के लिए ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए बेहतर फिर यही है कि अपने बच्चों को अवेयरनेस दें, बच्चों को समझने की कोशिश करें, उनको इग्नोर मत करें, उनकी बात ज़रूर सुनें। मैं अपने बच्चों का जैसे बता रही थी कि जी बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं उनको बता के भेजती हूँ, बार बार ताकीद करती हूँ, बार बार ताकीद कर रही होती हूँ कि नहीं जी आपने जो है ना कोई इस तरह की चीज़ होती है। इवन जब बच्चों का मैंने रिक्शा चेंज करवाया था तो मैंने उनके बारे में भी जो है ना वो बच्चों को कहा हुआ था कि अगर कोई एक्स्ट्रा बात करें, कोई आपको इस तरह का फील हो कि ये बंदा एक्स्ट्रा बातचीत कर रहा है, कोई आपसे घर वर का पूछ रहा है, घर के हवाले से भी कुछ लोगों को आदत होती है ना, पूछने लग जाते हैं जी आपके घर में क्या हो रहा था, कौन क्या कर रहा था, इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो मैंने बच्चों से ये चीज़ें भी पूछनी है, बच्चों को बताना कि हाथ नहीं पकड़ना, ये नहीं करना, किसी को अपना हाथ नहीं पकड़ने देना, मींस इस तरह की सारी चीज़ें मैं करके बेचती थी। फिर बच्चों को मतलब रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि यार हाँ हमारी माँ प्रोटेक्टिव है, उसको पता है हमने अपनी बातें जो है मामा से आके शेयर करनी है। तो इसी तरह बच्चों को कॉन्फिडेंस दिया जाता है अपनी। तो मतलब वही बात है कि पेरेंट्स तो कोशिश करते हैं कि अपने बच्चों को बेहतरीन से बेहतरीन तालीम व तरबियत दें, बच्चे को अपने जो है वो हर मुश्किल से हर आजमाइश से बचाएँ। और बाकी अल्लाह ताला से हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो सबके बच्चों को महफूज रखे और ऐसे लोगों को, ऐसे मैं लोग भी नहीं कहूँगी, मैं तो ऐसे जानवर कहूँगी कि उनसे महफूज रखे, और ऐसे जानवरों को जो है ना वो बस उनका जो है ना वो उनके इरादों को नाकाम बनाएं। आमीन सुम्मा आमीन। एनीवेज जी, ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट ट्रैक ऑन एयर करते हैं, उसके बाद नहीं बल्कि आप लोगों के मैसेजेस भी ऑन एयर करते हैं। और ठीक है, उसके बाद ना गाने की तरफ चलते हैं। एहसन साहब हैं जी 4471 पर मैसेज कर रहे हैं, एहसन लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम निमरा। वालेकुम अस्सलाम, सबसे पहले वेलकम निमरा मैम, कैसी हैं आप? कह रहे हैं जी आपकी आवाज़ अच्छी है, बहुत स्वीट। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही महकता चहकता रखे, आमीन सुम आमीन, और आपके शो को सुपर से भी ऊपर रखे, थैंक यू सो मच। और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आमीन। जज़ाकअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, आप भी हंसते मुस्कुराते रहें, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज का। उसके बाद फेसबुक पर हमारे साथ अली फरमान हैं, वेलकम जी, इट्स अमेजिंग, थैंक यू सो मच अली फरमान आपका। यूनस अंसारी हैं, गुड जी, थैंक यू। अब्दुलरहमान कह रहे हैं जी अस्सलाम वालेकुम। अब्दुलरहमान तहसील मेलसी, रज़ा भाई नू सलाम पेश कर देने, और आपका प्रोग्राम बहुत ज़बरदस्त है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रेहाना खान हैं जी भक्कर से, आपका भी बहुत शुक्रिया। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने अभी अभी FM 101 ट्यून इन किया है उनको हम कहेंगे वेलकम, वेलकम टू माय शो एंड वेलकम टू FM 101।
रोड्स पर हैं, ड्राइव कर रहे हैं, तो आपको कहेंगे ड्राइव रियली वेरी केयरफुली बिकॉज आप और आपकी जान उन तमाम लोगों के लिए जिनसे आप प्यार करते हैं और उन तमाम लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं बहुत प्यारी है, बहुत कीमती है। ख्याल रखिएगा।

0: ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. आपको खुश आमदीद कहते हैं, मुझे कहते हैं निमरा अरूज, और आप लोग सुन रहे हैं फ्रॉम 101 रेडियो पाकिस्तान लाहौर. टाइम हो चुका है 12:16 और मुझे बढ़ना है आप लोगों की कॉल्स की जानिब. कॉलिंग सेशन में जनाब मैंने आप लोगों से पूछा है कि मुझे ये बताइए, क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप कोई पिछले 4-5 महीने से ना एक काम शुरू करना चाह रहे हैं और कोई प्लान कर रहे हैं, बट वो आपका सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, और डेली आपकी जो सुबह है ना वो इसी बात से, इसी ख्याल से स्टार्ट होती है कि जी आज हमने ये अपना काम जो है वो पूरा करके रखना है, और एज़ यूजल आपके साथ यही होता है कि जी वो काम जो है ना फिर बीच में रह जाता है. अगर कुछ ऐसा है तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा. चलते हैं आपकी कॉल्स की जानिब और चेक करते हैं कि 1111 पर हमारे साथ कौन है. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: कौन हमारे साथ?
1: खान बाबा लाहौर डिफेंस से बोल रहा हूँ.
0: जी खान बाबा, कैसे हैं आप? ठीक हैं,
1: अल्लाह का फजल करम है. आपका प्रोग्राम मैंने सारा सुना से लेकर आखिर तक. नंबर एक. दूसरा ये है कि अगर पौधी हो जाए तो ठीक है, तीसरे दिन आप कुल बढ़ के पुराने बात का खत्म करके उसके असर सवाब के लिए दवा मांगे. नंबर दो, तो दूसरे बच्चों की जो बात है ये सब अपने वालदैन पे मुनसर है. वालदैन को चाहिए कि अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि वो किसी से ना कोई चीज कोई दे भी तो ना ले.
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल
1: ऐसे जैसे आपने कहा है ना, क्योंकि वह सिर्फ अस्सलाम वालेकुम की हद तक महदूद होनी चाहिए. इट्स राइट,
0: बिल्कुल.
1: आई अप्रिशिएट यू. आपको मैं शाबाश देता हूँ, बहुत अच्छी बात आपने किया.
0: बहुत शुक्रिया.
1: नंबर तीन, तीसरी बात ये है कि मैं तो नाबीना लोगों का इलाज कराता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट. तो मैं जनरल हॉस्पिटल में गया बच्ची को हजार, उनके जो रिसेप्शन उन्होंने कहा कि जी फॉर्म दे लेकर आओ. तो आई टेल देम, मैंने कहा भाई फॉर्म दे की क्या जरूरत.
0: ठीक है,
1: तो उन्होंने कहा, फिर मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर
0: जनाब, कोशिश ये करनी चाहिए कि किसी के हम नाम ना लें, किसी ओहदे को हम जो है वो यहाँ पे ऑन एयर जो है मेरा ख्याल है कि बताना ज़रूरी नहीं होता. आप अपनी बात वैसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, अपनी कोई भी बात है पहुँचाना चाहते हैं, बगैर नाम लिए भी अच्छे तरीके से मैसेज पहुँचा सकते हैं. बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का. टॉपिक मेरा ये है लाइव कॉलिंग सेशन के लिए. अच्छा, तरबियत की बात हो रही है, मैं सॉरी मैं फिर उसी चीज़ पर आ जाऊंगी. तरबियत हर माँ बाप अपने बच्चों की ना बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन जो आगे मामलात होते हैं उसमें उस बच्चे का कोई कसूर नहीं होता. ठीक है, पहले ख़वातीन के हवाले से ये बातें होती थी, तो ख़वातीन को, फीमेल्स को कसूरवार ठहराया जाता था कि वो अपनी ड्रेसिंग का ख्याल नहीं करती और इस तरह से सड़कों पर निकल जाती हैं और ऐसे वैसे. हालाँकि वो भी देखा जाए ना तो आजकल मैं क्या कहूँ, आप लोग खुद समझदार हैं कि एक बालिग बंदा जो है वो किसी नाबालिग बच्चे के साथ कोई गलत काम कर रहा है, तो इसमें आप कैसे उस बेचारे मासूम बच्चे को कसूरवार ठहरा सकते हैं? इसमें तो कसूरवार वो है जिसने गलत काम किया है. आई एम रियली सॉरी, मैं नहीं चाहती कि मैं अपने प्रोग्राम को जो है वो सीरियस करूँ, या मैं इतनी सख्त या इतनी तल्ख बातें यहाँ पर करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ जो है ना वो ऐसा हो जाता है कि आपको करनी पड़ जाती हैं. लेकिन बहरहाल हाँ, उन मर्दों की तरबियत करने वाली जो हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने, जब आप अपनी बच्चियों की तरबियत कर रही होती हैं ना कि उन्होंने अगले घरों में जाना है, जी ऐसे ना हो वैसे ना हो, तो वैसे ही अपने बेटों की भी तरबियत पर गौर करें, अपनी बेटों की भी तरबियत वैसे ही करें. उन्हें औरत की इज़्ज़त करना ज़रूर सिखाएँ, उन्हें हर बंदे की, बंदी की इज़्ज़त करना ज़रूर सिखाएँ, और उनको उनके लिमिटेशंस बताएँ. सिर्फ बच्चियों की तरबियत पे फोकस नहीं करना चाहिए है, बच्चों की भी तरबियत उतनी ही ज़रूरी होती है, बेटों की तरबियत भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी बेटियों की तरबियत. आई एम श्योर मेरी बात का मतलब मकसद जो था वो हर जगह पहुंच चुका होगा और मेरी बात किसी को बुरी नहीं लगी होगी. एनीवेज जी, मेरा लाइव कॉलिंग सेशन के लिए टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसी बात, कोई ऐसा काम जो आप पिछले 4-5 महीने से कहते हो कि जी मैंने आज शुरू करना है लेकिन वो नहीं हो पा रहा, कोई ऐसा प्लान है आपका तो जरूर आके शेयर करें हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम.
2: जी वालेकुम सलाम. आपकी निमरा रोज, अब्दुल हमीद फुकाबाद से बात कर रहा हूँ.
0: जी अब्दुल हमीद साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: जी, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं आपका कोई ऐसा काम, एक काम तो मुझे पता है, बाकी अगर कोई और उसके अलावा बर्फी के अलावा?
2: प्लानिंग मेरा है थी 3-4 महीने तो ना फ्रिज खराब हो, इसी को ले आनी थी कल, इंशाल्लाह मेरी वो प्लानिंग मेरा पूरा हो गया।
0: वाह जी वाह, जबरदस्त जबरदस्त।
2: कल ले गए तो फिर मैं ना किलो बर्फी बंडी पाला लूं, मगर शुक्र अल्लाह सोने
0: का शुक्र है, हां अल्लाह पाक ने सहूलत
2: दी। अभी मैं वो बच्चों से एक गल करूं
0: जी जी,
2: बच्चों वास्ते ना बिल्कुल ख्याल करना चाहिए, जैसे तुसी कहा ना किसी ना हाथ नहीं मिलाना चाहिए।
0: हां जी हां जी,
2: मेरिया बच्चिया रेंदिया भगतपुर है, उसे ना मोहल्ले एक बच्चा गुम हो गया।
0: ओहो, अच्छा, वो
2: ना किसी रक्षा आले ने वेख लिया, एक भगतपुरा किते ते एक मोरी किसी रक्षा आले ने दस्सदा, एक बेबी कागज चुगण आली ना बच्चा हाथ ना फड़ के लई जांदे,
0: वो
2: फटाफट गए उधरों उन्होंने ना उन्होंने पकड़ लिया फटाफट। मैं नहीं लिया जी, मैं नहीं लिया, आपे मेरे नाल आया। देखो ख्याल करना चाहिए ऐसे लोगों नु, इन्होंने
0: महफूज रखे। बहुत शुक्रिया अब्दुल हमीद साहब, आपसे बात
2: करके बहुत अच्छा, बहुत सारिया शक्ति रेडियो क्लब वालों सलाम कह रहे हैं,
0: बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। और जी ये तो थे अब्दुल हमीद साहब, फरुखाबाद से हमें कॉल कर रहे थे, और वाह जी वाह, इनका जो है ना फ्रिज आ गया काफ़ी अरसे से प्लान कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा हो गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई थी। अल्लाह ताला और बरकतें डाले। लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम बानो बानो के सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से हंसता मुस्कुराता हुआ।
0: वाह जी वाह, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप बताएं शमीमा आपी, आप ठीक हैं?
3: जी जी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। और आज यकीन करोगे यकीन करो, आपने बहुत अच्छी बातें सभी बताई,
0: बहुत शुक्रिया।
3: अल्लाह करे कि इन सब लोगों सुनने वालों के दिलों को ये देना,
0: आमीन आमीन आमीन।
3: तो हमारे लिए पता ही क्या, मैं हमने तो वो कुछ कई रस्में ऐसी है जो शादी जो आप ना ख़त्म कर दी हैं, जिसमें क्या दूध पिलाई रस्म होती है, और वो क्या नाम सास नंदों को कपड़े जोड़े दिए जाते हैं वो भी नहीं, और ये वो जो बिद होती है ना वो सब बादाम वगैरह होते हैं, तो वो भी रस्म खा दो, मन मन डेढ़ डेढ़ मन लेके जाना पड़ती थी, तो आज वो कितने की आती है वो भी खत्म कर दिए बिद भी।
0: बहुत अच्छी
3: और
0: बात है।
3: बहुत सारी शादी ब्याह की रस्में जो है ना रस्ता रुकाई जो है ना रस्म वो भी खत्म कर दी है।
0: ठीक ठीक ठीक,
3: तो बल्कि हमारे अजीज रिश्तेदार में शादी, दोनों बेटों की शादी की, उन्होंने तो वो लड़की वालों से जहेज तक नहीं लिया, खुद जब शादी हो गई तो उन्होंने अपने घर से ना लड़के वालों ने खुद सामान का सारा फर्नीचर वगैरह ला के दिया।
0: चलें, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा शिमी मापी मुझे बताएं टॉपिक के हवाले से।
3: वालेकुम
0: अस्सलाम।
3: वालेकुम अस्सलाम। बाहर का मौसम जबरदस्त, आज तो सुबह से हवाएं चल रही
0: हैं, बेहतर है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जरूर जरूर ठीक हो गया, जरूर चलाती हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और जी ये तो थी शमीमा पी हमारे साथ, और वाकई कल रात की बारिश के बाद जो है ना मौसम बहुत बेहतर हुआ है, और सुबह जब मैं आ रही थी, जब तक ये कि ऑटो पे मैं आ रही थी, तो जब तक ऑटो चल रहा था ना हवा बड़ी ठंडी ठंडी लग रही थी, मतलब वो जो गर्मी वाली जो लू लग रही होती है ना, या हवा के थपेड़े पता लग रहा होता है, वो थप्पड़ों की सूरत में बरस रहे होते हैं, तो वो वाली चीज़ नहीं थी। मौसम जो है वो बहुत बेहतर है, धूप थी लेकिन यह कि वो उस तरह वाला हाल नहीं था जो पिछले दिनों हुआ हुआ था, सफोकेशन हुई हुई थी। और मैं इतने दिनों से कह रही थी कि जी हमारी तरफ तो बारिश हो ही नहीं रही है, रोज़ फोरकास्ट में आ रहा होता है कि जी बारिश है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है, या बहुत होता था ना तो हल्की हल्की कनियाँ पड़ रही होती थी। कल भी यही हुआ, जब फोरकास्ट में मैंने चेक किया है कि जी बारिश है, और मैं बड़े मज़े से ना मेरे मियाँ साहब गमलों को पानी दे रहे थे, मैं टेरेस पे कपड़े फैलाए हुए थे, मेरी बेटी ने बल्कि कपड़े कल धो के तो फैलाए थे उसने, मैं बड़े मज़े से कही कह के ना कि यार बारिश तो होती नहीं है और बहुत है तो हल्की सी कनियाँ पड़ती हैं, मैं ये कह के ना बड़े मज़े से अंदर चली गई हूँ, और जाके मैंने आराम से जो है वो अपने काम शाम समेट के तो मैं बड़े मज़े से मोबाइल पर लग गई हूँ। एकदम जो है ना मुझे कॉल आती है, और कॉल सुनते सुनते मैं बाहर जाती हूँ, और मैं देखती हूँ यार ये तो बारिश अच्छी खासी हो रही है और ऊपर से जो कपड़े डाले हुए थे वो तमाम के तमाम भीग चुके थे। मैं फिर खैर कॉल पे और साथ साथ जो है ना वो जल्दी जल्दी मैंने कपड़े जो हैं वो समेटे और वो जो सूख चुके थे कपड़े ना वो दोबारा से गीले हो चुके थे तो दोबारा, लेकिन अच्छा लगा, मज़ा आया। और फिर उसके बाद आधी रात को मेरी तकरीबन कोई 1 बजे के करीब ना आँख खुली और वो भी मेरे बेटे ने मुझे आके उठाया, मम्मा मुझे डर लग रहा है बाहर से ना पानी की बड़ी आवाज़ आ रही है, क्योंकि एसी चल रहा था, दरवाजे बंद थे तो पता नहीं लग रहा था। तो बहरहाल मैंने फिर दरवाज़ा खोल के देखा जी पानी कहाँ से गिर रहा है, तो वो देखा तो वो खैर बारिश हो रही थी। तो मैं मतलब बड़ा अच्छा रहा और सुकून किया कि भाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बारिश जो है वो अच्छी खासी बरस की, रात को मौसम बहुत बेहतर हो गया था। खैर जी नेक्स्ट ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं और ट्रैक कौन सा प्ले करूं, मेरा ख्याल है कि ये वाला ऑन एयर करते हैं, बड़ा प्यारा ट्रैक है, ज़ेब बंगश की आवाज़ है और इनकी आवाज़ में ना बड़ा डिफरेंट एक टच है, बड़ा प्यारा, बड़ा सादा सा, बड़ा मीठा सा। इंजॉय की जगह इस ट्रैक को, इसके बाद वापस आती हूँ। 12:26 हो गए हैं। टॉपिक हमारा आज का ये है, आपका कोई ऐसा प्लान जो आप पिछले कुछ अरसे से बना रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा, कोई ऐसा काम जो आपका डेली पेंडिंग हो जाता है, हर वीकेंड पे पेंडिंग हो जाता है, हर मंथ में पेंडिंग हो जाता है, कोई ऐसा काम जरूर हमारे साथ शेयर करें।

0: right. इतना खूबसूरत सा ट्रैक है, इसको हम अपने BGM में रखते हैं। Let's see next caller कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: क्या हाल हैं एहसन भाई आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं?
0: अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप भक्कर में हैं कि लाहौर में हैं, भले ये बताएं मुझे। सॉरी आपकी आवाज बड़ी ब्रेक होके आई है।
1: देखा अभी तक जो हमारी प्लानिंग है वो बक्कर में, लाहौर नहीं पहुंची।
0: लाहौर नहीं पहुंची, तो आपका कोई प्लान है फिर लाहौर आने का?
1: प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी।
0: नहीं मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रहे हैं। चले एहसन भाई कोई नहीं, अल्लाह ताला आपको आपके नेक इरादों में कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन।
1: प्लान ए जो है हमारा वो है कि मुझे ना कागज वगैरह मेरे कागजात क्लियर हो चुके हैं चश्मा सी प्रोजेक्ट पे, तो हो सकता है मुझे कॉल आ जाए 4 दिन बाद 2 दिन बाद 3 दिन बाद 10 दिन बाद। तो उसके बाद प्लान बी ये है कि इसके साथ फिर अपनी वो फार्मिंग को दोबारा से बहाल करना है साथ साथ। प्लान सी है अगर कहीं कभी इधर से प्रोग्राम नहीं बनते तो फिर लाहौर तो है ही ना।
0: सही, यानी आपके सारे प्लाव बना लिए हुए है ना? एक तो
1: नहीं, वो तकरीबन 9 महीने में ना लाहौर।
0: सही सही सही, चलें जी अल्लाह ताला आपके प्लान्स को कामयाब करे।
1: कोशिशें चल रही हैं, बस दुआ कीजिए क्योंकि इधर मेरे जो है ज्यादातर चांसेस इधर ही हैं कि मैं।
0: वाह जी वाह वाह, जबरदस्त जी जबरदस्त, अल्लाह ताला आपको नेक इरादों में बिल्कुल कामयाब करे और जो आपने सोचा वह वो वैसे ही हो जाए, आमीन
1: आमीन। आपकी और आपकी पूरी फैमिली के लिए मेरी दुआएं।
0: बहुत शुक्रिया,
1: आपको खैर खैरियत से रखे, आपके खालिद के लिए बहुत सारी दुआएं, अल्लाह पाक उनको बड़ी करामत करे,
0: आमीन आमीन।
1: रसम रिवाज की आप थोड़ी सी बात कर रही थी तो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारे पास अगर कोई बंदा पहले फौत हो जाए तो जो लोग आते थे ना तकरीबन वो फिर एक कपड़ा लेके आया करते थे।
0: अच्छा,
1: एक सादा वाइट कपड़ा जो होता था ना वो उनको देते थे। तो फिर नाना जान को अल्लाह पाक करी करे, उन्होंने ना सारे गांव वालों को बुलाया कि ये काम नहीं ठीक, इसकी बजाय थोड़े थोड़े पैसे दिया करें।
0: अच्छा,
1: तो वो फिर एक काफी के ऊपर लिख दिया करते कि फलाने या 150। उस वक्त यानी कि 50 की भी बड़ी कदर हुआ करती थी। नाना जी कहते थे कि ये कपड़ा जो है फिर वो किसी के काम नहीं आता, फिर वो इसकी बजाय अगर आप पैसों की हेल्प करेंगे तो उसका शायद घर चल जाएगा। तो वो
0: मेरा ख्याल है कि जहाँ पे डिजर्विंग कोई ऐसा हो ना जिसका आपको पता है कि ये बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी तो हर हाल में मेरा ख्याल है मदद करनी चाहिए। और आपके आपको अल्लाह ताला ने इतनी इस्तेआत दी है कि आप उसको पैसे देकर उसकी हेल्प कर सकते हैं, कोई उसका चूल्हा जला सकते हैं, कुछ भी किसी भी तरह। तो वो मेरा ख्याल है हर हाल में, ज़रूरी नहीं है कि कोई डेथ हो जाए या कोई शादी ब्याह हो, मतलब इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए फिर ना।
1: फिर इस तरह होता है कि आप किसी की भी डेथ होती है ना तो उनको कोई 25-30 हजार रुपए उनके जमा हो जाते हैं।
0: सही, सही।
1: चलो उनका कोई रोटी पानी के खर्चे निकल आता है। फिर वो कुछ लोग तो होते हैं बिल्कुल उनको कोई परवाह नहीं होती, उनको तो कुछ लोग होते हैं जिनको शायद 5 हजार की भी परवाह होती है कि जी हमारे इकट्ठे हो गए तो बहुत कुछ हो जाता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है।
1: तो हमारे जितने दोस्त सुन रहे हैं उनको अस्सलाम वालेकुम, आरजे मसूद उनको भी अस्सलाम वालेकुम, सब लोगों का
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच एहसन भाई, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बहुत अच्छी बात है, हेल्प करना बहुत अच्छी बात है। और मेरा ख्याल है कि अगर आप इस्तात रखते हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि सारा साल आप लोगों को खिलाएं, सारा साल देगे तकसीम करें, उसके लिए किसी ख़ास मौके का वेट नहीं होना चाहिए। अगर आपको अल्लाह ताला ने इतनी, और हैं दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस्तात दी है और वो देगे बांटते हैं, डेली बेसिस पे खाने खिलाते हैं भूखों को, उन लोगों को जो डिज़र्विंग है, जिनके पास जो मेहनत मजदूरी करते हैं। बहुत सारे ऐसे आउटसाइडर मजदूर मैंने देखे हैं जो कि लाइन में लगे होते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटर्स बने हुए हैं हमारे इर्द गिर्द जहाँ पे जो है ना ऐसे सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे खाने के टाइम पे 3 वक्त का खाना जो है वो तकसीम किया जा रहा होता है। तो मतलब ये कहने का है कि आपको अल्लाह ताला ने इतनी इस्तेआत दी है तो वो आप ज़रूर उस पर मतलब उसके लिए, लोगों के लिए, वेलफेयर के लिए उनकी काम करें। लेकिन उसको किसी मज़हब के साथ मुंसलिक कर देना या उसको जो है वो फ़र्ज़ कह देना या इस तरह से बयान करना कि जिस बंदे की इस्तेआत नहीं है उसको कहना नहीं जी ये तो बहुत ज़रूरी है भाई, इसके बगैर जो है ना वो आपका कोई भी काम कबूल नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और उसके लिए किसी की मतलब किसी फंक्शन का, किसी इवेंट का, किसी गमी खुशी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए. किसी की भी वेलफेयर हो, किसी की आप हेल्प करना चाह रहे हैं, वो टाइम नहीं देखती, वो बस ये देखती है कि यार आपकी जेब इजाज़त देती है ये काम करने की तो वो ज़रूर काम करें, लेकिन उसको किसी चीज़ के साथ मंसलिक ना करें, किसी चीज़ के साथ जोड़ ना दें. एनीवेज जी, नेक्स्ट कॉलर चेक करते हैं कौन है. अस्सलाम वालेकुम. अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. भाई आप बताइए, आप ठीक हैं?
2: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त एवन पिपटा की शाम सुन रहे, बहुत अच्छा लग रहा है.
0: बहुत शुक्रिया.
2: मैं ये कहना चाहता हूँ, अभी देखो बात या पीस रहे, अल्लाह पाक ने हर तरह के लोगों को पैदा किया.
0: बिल्कुल.
2: कुछ लोग अमीर है, कुछ गरीब है. तो इसी वजह से जो गरीब पैदा किया है वो अल्लाह पाक ने वो अमीरों पे एक आजमाइश का इम्तिहान दिया हुआ है.
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है.
2: जब मैं इस बंदे को अमीर करूंगा, जायदाद दौलत वगैरह में सब कुछ दूंगा, ये गरीब का ख्याल रखेगा या नहीं रखेगा?
0: बिल्कुल ऐसे ही है.
2: हम लोगों की आजमाइश की होता है, जब भी आस पास जब आपके हमसाए और रिश्तेदार जो भी गरीब हो, पहले उसी हमसाए का हक बनता है कि उसका अपना जरूरत चीज पूरी करवाए.
0: बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही.
2: चाहे पैसे की शक्ल में हो, चाहे जो जरूरत करे, हम इसको भरपूर ख्याल रखना चाहिए.
0: बिल्कुल ऐसे.
2: अभी देखो हर तरह के लोग आता है, हम लोगों के फर्ज बनते हैं, हम लोग हर किसी के साथ हेल्प आउट कर लेना चाहिए.
0: बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक हो गया. अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपकी बात मैंने नोट कर ली. ठीक है,
2: किसी के साथ मदद करे तो हमें सोशल मीडिया पिक्चर वगैरह में नहीं बनाना चाहिए, गलत बात है.
0: ठीक हो गया, ठीक हो गया. चले, थैंक यू सो मच अल्हम्दुलिल्लाह भाई आपका, बहुत शुक्रिया. हाफिज. ये थे जनाब हमदुल्ला मलाखेल फ्रॉम कोयटा. कोयटा के मामला जो है ना वो थोड़े से गड़बड़ हुए हैं आजकल, अल्लाह ताला वहाँ पे भी करम करे अपना. अस्सलाम वालेकुम.
3: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी?
0: अल्लाह का शुक्र जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. मोहम्मद शहजाद साहब हमारे साथ हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं?
3: बस आपकी मेहरबानी, आपकी दुआएं, माशाल्लाह अच्छा शो, अच्छी बातें हैं, बहुत अच्छी बातें होती है जी.
0: थैंक यू.
3: तो पहले नंबर पे हमारे भाई क्यों नहीं आ रहे, मकसूर भाई?
0: भाई इसलिए नहीं आ रहे, अभी पिछले में भी आ जाए मुझे कंफर्म नहीं है. ठीक है, बस थोड़े से मसरूफियात चल रहे थे, और आपको पता है इनके वालिद साहब बीमार थे, तो उनकी डेथ हुई थी जून में और 15 जून, तो बस इसी वजह से जो है ना हम लोग दोनों ही नहीं आ रहे थे.
3: जी मुझे नहीं था मालूम, लेकिन
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है. बस दुआएं चाहिए.
3: मुझे नहीं,
0: नहीं नहीं कोई बात नहीं,
3: दुआएं जी, हाँ,
0: दुआएं चाहिए, बिल्कुल दुआएं चाहिए. और आपकी जिंदगानी ठीक है? आपकी तरफ सब खैर खैरियत है?
3: हाँ शुक्र है अल्लाह का, बहुत गुजर रही अच्छी जिंदगानी. लेकिन जो आपने मौजू रखा है ना, मेरे साथ यही वाकया हो रहा है जी.
0: कौन सा वाला?
3: दो ढाई महीने से जो ना वे काम सोचता हूँ, काम होता नहीं पड़ा.
0: अच्छा, होता नहीं पड़ा. कौन सा ऐसा काम है, है? चाची जी से पैसे तो नहीं निकलवाने
3: ना? कारोबार, कारोबार. अच्छा,
0: मैंने कहा शायद चाची जी पैसे नहीं दे रहे.
3: पैसे थोड़े पहले उतार दिए थे, अब लोड पड़ गई.
0: चलो वेरी गुड. ये तो देखे माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने रिश्ते ऐसे बनाए हैं कि ये एक दूसरे के साथ ना आखिरी टाइम तक जरूरत कुछ ना कुछ रहनी ही है.
3: बिल्कुल
0: बिल्कुल,
3: काम आना
0: बिल्कुल,
3: और अच्छी बात करना. और मैंने जो बच्चों की बात की है ना
0: जी जी,
3: तो मैंने तो अपने बच्चों को ये भी समझाया कि गली मोहल्ले में आ जाए ना, ये इनका घर कहाँ है हमें दिखाओ, हमें वहाँ तक जोड़ो, तो बिल्कुल ही जाना.
0: बिल्कुल बिल्कुल सही,
3: बिल्कुल
0: है.
3: आपने कहना हमें नहीं मालूम जी कौन सा घर है, तो हमें बिल्कुल
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया,
3: बहुत सबको सलाम,
0: थैंक यू सो मच.

जी ऐसा ही होना चाहिए है। ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट ट्रैक की तरफ बढ़ते हैं। 12 बज के 42 मिनट हो गए हैं और 11 पे ही मेरी सुई अटकी हुई थी। ये कॉल ले लें, क्या ख्याल है? अच्छा एक काम हो सकता है कि हम गाने को भी अपने साथ साथ रखें और साथ साथ आप लोगों से बात भी करें। नया ट्रैक है जी जोहा वसीम एंड अर्शमान नईम, अच्छा गाना है, थोड़ा सा सुनते हैं इसको फिर आप लोगों की कॉल्स लेते हैं। बल्कि साथ साथ मैसेज ऑन करती हूँ जी। हमारे साथ बाबर अली हैं फ्रॉम सवात मालाकंड दरगई, आपको स्पेशल सलाम, वालेकुम अस्सलाम। और फेसबुक पर हमारे साथ कौन कौन मौजूद है? रिहाना खान फ्रॉम भक्कर, रियाज भट्टी साहब मौजूद हैं जी, ये सारे मैसेजेस किए हैं। शादरा से हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। रुमान अरशद हैं, रुमान अरशद बहुत दिनों के बाद आज आप शामिल हो रहे हैं प्रोग्राम में, कह रहे हैं वेरी नाइस आरजे निमरा रूज, शो इज गोइंग आउटस्टैंडिंग, हमेशा की तरह कीप इट अप डियर, लिस्टिंग योर शो फ्रॉम शाहदरा लाहौर पाकिस्तान। रुमान बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप बहुत दिनों के बाद शामिल हुए हैं, थैंक यू सो मच।

0: अच्छा गाना है, मज़ेदार है। मैंने भी पहली दफ़ा सुना है, बस मैंने देखा है कि ये कोई न्यू ट्रैक आया है जोहा वसीम का। जोहा वसीम जो है ना वो आजकल काफ़ी फेमस हुई भी हैं। अच्छा ट्रैक है। लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से?
1: अपील लाहौर शाहबाग से मोहम्मद नवीद बात कर रहे
0: हैं। जी मोहम्मद नवीद साहब, कैसे हैं आप?
1: जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बिल आलमीन।
0: माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और क्या कहना चाहेंगे आज आप? मुझे लग रहा है वेरी फर्स्ट टाइम कॉल किया आपने, ऐसे ही है?
1: नहीं आप ही, मैं तो फोन कॉल वगैरह करता रहता हूँ लेकिन आपके शो में पहली बार कॉल है।
0: ओके चलें, वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और मुझे बताएं क्या कहना चाहेंगे?
1: जी आप ही, मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ, आप बहुत अच्छी बातें कर रही हैं लेकिन ये देखे ना कि इस बातों पे हमें अमल करने की भी जरूरत है। सुनने के हिसाब से नहीं करना चाहिए।
0: अब अमल तो ऑब्वियसली मतलब बंदे ने खुद ही करना होता है ना। मैं तो सिर्फ कह सकती हूँ या खुद अमल कर सकती हूँ।
1: जी मैं वैसे बात कर रहा हूँ, देखे कि एक बात कहते हैं ना कि जैसे बड़े कहते थे जैसे सुन के तो उधर से निकाल देने, वो काम ही ना होना चाहिए।
0: बिल्कुल ऐसे ही,
1: उसको सुन के जेल में बिठा के दिल को समझा के देखें दुनिया तो सोचने वाली बात है। आपकी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं रहना, सिर्फ अलाहाबाद का नाम रहना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बेशक बेशक ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कोई ऐसा प्लान, कोई ऐसा काम जो आपका पेंडिंग जा रहा हो कुछ अरसे से और आप डेली सोचते हैं भाई आज ये मैंने मुका के छोड़ना है।
1: अब भी मुका के मैंने तो जिंदगी में सिर्फ 36 साल मेरी उम्र हो गई है मेरे पास, जबकि होश संभाली हुई है। यही मेरा दिल करता है मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर भरोसा करता हूं।
0: माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला कबूल करे और अल्लाह ताला आपको हाजिरी के लिए बुलाएं। ठीक है, आमीन
1: आमीन।
0: चले जजाकअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक है,
1: ओके अल्लाह हाफिज़।
0: थैंक यू
1: पूरी मैनेजमेंट को दोनों हाथों से मेरा स्लोगन,
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अल्लाह हाफिज़,
1: ओके अल्लाह
0: हाफिज़। और जी ये थे मोहम्मद नवीद हमारे साथ। नेक्स्ट कॉल चेक करते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: जी वालेकुम सलाम,
0: कौन? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है और कहां से?
2: मोहसिन साहब।
0: मोहसिन
2: दुबई से?
0: नहीं आप दुबई से कॉल करें कि इस्लामपुरा से कॉल करें ये बताएं। नहीं मुझे लगा है आपने पहले यही बात बोली है इसलिए मैंने पूछा।
2: तो मैं कुछ इतना हुआ कि मैंने दो दफा ट्राई किया तो फर्स्ट टाइम लग गया माशाल्लाह इतनी जल्दी।
0: चले वेरी गुड, आपको वेलकम कहते हैं अपने प्रोग्राम में। और इतनी दूर से आप कॉल कर रहे हैं, यकीनन आपने कुछ सोचा होगा कि ये बात करूंगा।
2: मैं कसम से कुछ नहीं सोचा, अभी फोन किया था, सबसे पहले आप आ गए, मैंने आपकी डीपी देखी, उसमें मैंने मैसेज किया।
0: ठीक है
2: ट्राई करता हूँ कॉल कर लेता हूँ, तो मैंने कॉल कर दी ना, मुझे कुछ पता है।
0: चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं है। कोई अच्छा सा मैसेज देना चाहते हैं हमारे सुनने वालों को जरूर दें।
2: बस सब खुश रहे, एक दूसरे से प्यार करें, खुश मानते हैं, यही जिंदगी है, आपके बाद कुछ नहीं मिलना, सब कुछ
0: बिल्कुल
2: तो बस ये हो नहीं रहा, ये हो नहीं रहा लेकिन होना चाहिए,
0: होना चाहिए बिल्कुल ऐसे ही, बहुत कुछ होना चाहिए। चलें बहुत अच्छा लगा मोहसिन आपसे बात करके, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और जी थे मोहसिन हमारे साथ। बहुत सारे प्लान्स ना हम डेली बनाते हैं और उस पर मेरा ख्याल है कि अमल करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक दफ़ा ना पहले डिटर्मिनेशन हमारे अंदर आए, हम उस पर कायम हो जाएं कि नहीं जी हमने तो ये काम करके छोड़ना है। और यकीन माने जब आप डिसाइड कर लेते हैं ना कि भाई ये वाला काम जो है ना हमने हर हाल में करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर ऑटोमेटिकली उसके लिए हिम्मत भी आना शुरू हो जाती है, उसके लिए वसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए और असल बात यही है कि वो डिटर्मिनेशन आए कहाँ से। बाज़ूकात बंदा बहुत स्लो हो जाता है।
3: शकीरा
0: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम, मैं फरीश बुर्जी लाहौर से बात कर रही हूँ। निमरा आप कैसी हैं?
0: अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप ठीक हैं?
4: ठीक हूँ। सबसे पहले के ना फादर साहब के लिए बहुत सारी दुआएं,
0: बहुत शुक्रिया, आमीन आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया।
4: ये है कि पुरानी रस्में खत्म करनी चाहिए क्योंकि महंगाई बड़ी हो गई है, शादी में जो रस्में होती है ना वो भी कम कर दे।
0: बिल्कुल,
4: जो रस्में होती है खाना पकाना या खाना खिलाना ये फजूल रस्म है, घर वाले भूखे बैठे होते हैं, बाहर वाले आके खाना खा के चले जाते हैं, उनको तसल्ली भी नहीं देते।
0: बिल्कुल ऐसी
4: यूनिवर्सिटियाँ स्कूल खुलने वाले हैं तो लोन के कपड़े बनाने हैं, बाहर देखते हैं गर्मी बड़ी है तो फिर घर के अंदर ही बैठ जाते हैं। बाकी कादर पीछे खड़े हैं, अल्लाह हाफिज़ ईमान।
0: थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़। और जी तो थी फरी चुबुरजी से और रुमान अरशद, बहुत शुक्रिया जी इतने सारे कमेंट्स के लिए। मोहसिन रजा हैं जी, कह रहे हैं हाय सिस्टर अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह ब्यूटीफुल, कैसी हैं आप? मोहसिन फ्रॉम दुबई, आई थिंक ये मोहसिन वही हैं जिन्होंने अभी हमें कॉल भी मिलाई थी। और थैंक यू सो मच जी। रुमान अरशद कह रहे हैं जी साइलेंट लिसनर था मैं, अभी भी मेरा ख्याल है आपने कभी कॉल तो नहीं शामिल की, अभी भी आप साइलेंट ही हैं, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि कमेंट्स शामिल करके तो थोड़ी बहुत आवाज़ जो है ना वो आ जाती होती है। बहुत शुक्रिया आपका, प्लेलिस्ट कमाल कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया, और आवाज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, उसके अलावा ढेर सारी तारीफ़ें की हैं। हमदुल्ला मलखेल भाई को सलाम दिया आपने, वालेकुम अस्सलाम। और कह रहे हैं जी कल अच्छी खासी बारिश हुई है, बिल्कुल ऐसे ही है, रात को काफ़ी अच्छी खासी बारिश हुई है, हमारी तरफ तो रात को हुई है तो मुझे उसी का पता है, और मौसम बहुत बेहतर हो गया है। अभी लेटेस्ट सिचुएशन मुझे नहीं मालूम है बाहर क्या सिचुएशन चल रही है, और टाइम जो है ना वो ऐसे हाथ से निकलता चला जा रहा है, 12:51 हो गए हैं और घड़ी की सुइयां हमें कह रही हैं कि जी अब आप इजाज़त ले लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपका जो ये वाला गाना जो लास्ट ट्रैक मैंने ऑन एयर करना है वो प्रॉपरली चल सके। सो जी आप लोगों के साथ मुलाकात रहती है मेरी एवरी सैटरडे 11 to 1 लेडीज़ लाउंज में। कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि जी कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आऊँ, कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिन पे हम बात करते हुए शर्माते हैं, घबराते हैं, या पता नहीं आंखें बंद करके क्यों बैठ जाते हैं, जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और जब मुझे ये मौका मिला है, ये चांस मिला है इस माइक पर आकर बोलने का, तो क्यों ना मैं वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं। हमेशा से मेरी यही कोशिश रही है कि शायद मेरा कोई एक लफ्ज़ किसी के दिल में घर कर जाए, किसी की कोई मुश्किल आसान हो जाए, किसी के लिए कोई किसी चीज़ का हल निकल आए, किसी की कोई परेशानी दूर हो जाए, तो मेरा ख्याल है मुझे सब मेहनत वसूल हो जाती है। और ये इखलाकी बुराइयाँ जो हमारी इर्द गिर्द जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, सबसे पहले तो अल्लाह ताला इनको अपना करम करे, बस यही दुआ कर सकती हूँ। और सबके बच्चों को, सबके बहन भाइयों को, सबके पेरेंट्स को, सबके अपने प्यारों को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। हम कह भी ना पाए तन्हा ऐसे कहीं मर ही ना जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, कदर कीजिएगा उन लोगों की जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं। कहीं मर ही ना जाए। ये गाना मैंने दोबारा प्ले किया है। 12:53 हो गए हैं। ये खूबसूरत सा सॉन्ग सुनिएगा, इंजॉय कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सैटरडे मुलाकात होगी आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।

0: This is FM 101.
1: You're listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.
0: This is FM 101.
1: Listening to FM 101, Abale Bale Oshawa Shawa.
0: This is FM 101.
2: FM 101, Nal Nal Sade, the Nal Nal Tuade. क्यों जी ये कोई शक है क्या?
3: सजड़ों से बेलियो मैं जली जफर तुसी सुनदे पे जे गजदा बजदा रेडियो चैनल एफएम 101 मेरा मतलब

FM 101. This is FM.

जानू माया तेरी ठगियां ने मा।

मुझे भूल न जाना, मुझे याद न आना।

0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: This is FM 101. This is FM.
0: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।
1: This is FM 101.

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
1: सिर्फ मैल रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर,

Radio Big Style. FM 101.

0: This is FM 101.
1: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया।

0: क्यों तू अच्छा लगता है, मिला तो सोचेंगे तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे सारा शहर शनासाई का, दावेदार तो है लेकिन सारा शहर शनासाई का, दावेदार तो है लेकिन कौन हमारा अपना है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, हमने उसको लिखा था कुछ मिलने की तदबीर करो, उसने लिख कर भेजा है वक्त मिला तो सोचेंगे। और मौसम खुशबू बादे सबा, चांद शफक और तारों में, मौसम खुशबू बादे सबा, चांद शफक और तारों में, कौन तुम्हारे जैसा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। और या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, या तो अपने दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की, मशवरा उसका अच्छा है, वक्त मिला तो सोचेंगे। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे, वक्त मिला तो सोचेंगे।
1: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

0: News headlines.
1: रेडियो पाकिस्तान है, इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब और मालदीव के वज़राए ख़ारिजा के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान इलाकाई और बैन-उल-अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। इस्लामी तआवुन तंजीम के रुकन ममालिक के वफूद कल शुरू होने वाली ख़वातीन के बारे में OIC की वजारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में ऑपरेशन शोबान के दौरान मजीद 21 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का तीसरा क्वार्टर फाइनल आज रात मियामी स्टेडियम में नॉर्वे और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।
2: Hey, we'll be back after-

0: में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको ये डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ है 100% पीछे।
1: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
2: This is FM 101.1.
3: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mitti, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. To the one above, FM 101.
4: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: स्कूल में इतना पीछे पीछे क्यों रहती हो?
1: आगे जाऊंगी तो सबको डैंड्रफ दिखेगा, सब मजाक उड़ाएंगे।
0: अब एग और योगर्ट के साथ तुम रहोगी आगे और डैंड्रफ रहे 100% पीछे।
2: सिर्फ मैं रहेगी आगे बस।
0: नया लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू, पहली बार एग एंड योगर्ट के साथ। अब बालों से 100% खुश्की जाए, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए। लाइफ बॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विद योगर्ट एंड एग, 100% आगे बढ़ो बिना रुके।
3: This is FM 101.1.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Vichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad.

सुनते रहिए FM 101 101 101।

और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: आज इस्लाम से खबरें सुनिए।
1: पहले अहम खबरों का खुलासा। नायब वज़ीर आज़म और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने टेलीफोन पर खत्ते की हालिया सूरतेहाल पर तबादला ख्याल किया है। इस्लामी तआवुन तंजीम के रुकन ममालिक के वफूद कल शुरू होने वाली ख़वातीन के बारे में OIC की दो रोज़ा वज़ारती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान में जारी ऑपरेशन शाबान के दौरान मज़ीद 21 दहशत गर्दों को जहन्नम रसीद कर दिया है। और आलमी कप फुटबॉल टूर्नामेंट का तीसरा क्वार्टर फाइनल आज रात मायामी स्टेडियम में नॉर्वे और इंग्लैंड के दरमियान खेला जाएगा।
2: दिस इज FM 101.1।
3: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
4: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू FM 101, द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान। रेडियो पाकिस्तान।
5: साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

there's music, and then there's magic. One above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

there's music, and then there's magic. One Above FM 101.

dance music, and then dance magic. One Above FM 101.

जेके मरी आजाद कश्मीर पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, इनफैक्ट पूरी दुनिया में जहां जहां पर आप हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ट्यून इन करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनने के लिए एफएम 101 चैनल पाकिस्तान को। और उम्मीद है कि तमाम सुनने वाले बिल्कुल बिल्कुल फिटफाट सेट को इकसान एंड स्ट्रांग हेल के साथ मेरे यानी कि जिशान नासिर के बिल्कुल साथ साथ है। और प्रोग्राम जिसका नाम है 101 इंटरनेशनल, इसको ट्यून इन किए हुए हैं। इंटरनेशनल हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इस वक्त हम सुने जा रहे हैं लाहौर, कराची, मुल्तान, पिशावर, बहावलपुर, इंशाद, पूरा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, दुबई, अमान, अजमान और इटली, रोम, फ्रांस और जहां जहां पर www.radio.gov.pk के थ्रू। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और अमूमी तौर पर मेरा प्रोग्राम 10 से 12 होता है, लेकिन आज मैंने आपसे, चूंकि मैंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे अपडेट भी किया था कि आई विल बी कमिंग अराउंड 12 इंशाल्लाह, सो बिल्कुल जो मैंने आपसे वादा किया है उसको हम निभाएंगे भी, बहुत सारी बातें भी करेंगे, सब कुछ वो जिसका आप इंतजार करते हैं प्रोग्राम में होगा, प्रोग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिसकी आप उम्मीद नहीं करते हैं। तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, टेंशन नहीं लेनी है आपने, जस्ट सिट बैक, आई एम हियर। अगर आप कॉल करना चाहें तो पहला हाफ हम कॉल लेंगे, ठीक एक बजे मैं जिक्र का आगाज करूंगा, 051-111-0101 और 051-9020-2540, ये आपके और मेरे रابطے का नंबर रहेगा।

0: वेलकम बैक मौजूद सामने एक बार फिर से खुश आमदीद और लौट कर हम आ चुके हैं वापस 051-111-0101-051-90-2540 दैट इज द नंबर टू डायल ऑन। बहुत सारे मामलात साथ साथ जब आपको देखने हो ना तो बहुत सारे मामलात में आप उलझे होते हैं। बार कैफ पोस्ट अपडेट हो चुकी है जनाब हमारे स्टेशन के ऑफिशियल फैन पेज के ऊपर जो कि है www.facebook.com/FM101ChannelPakistan। पहले कॉलर हमारे साथ है, लेट्स सी हु डू वी हैव द सन कॉलर। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो, क्या हाल है भाई? कौन बात कर रही हो? कहाँ से? कौन सी शहजादी?
1: इकरा।
0: क्या हाल है?
1: मैं ठीक हूँ सर जी, आप जी?
0: हाँ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इकरा क्या चल रहा है लाइफ में? मैं नहीं उठाया, मैंने तो बिल्कुल नहीं उठाया यार, मैं तो बड़ा सादा सा आदमी हूँ। अच्छा आप ही नहीं उठाया, आप ही नहीं उठाया, गुड गुड गुड गुड। और सुनाएं क्या कहना चाहेंगी? कलाम सुनाएं जी, सुनाएं। हम आए यहाँ पे कलाम सुनने और सुनाने। अच्छा

0: से जहां में बे मिसाल है, ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, ना कोई दूसरा खुदा, ना कोई दूसरा हुसैन
1: हुसैन
0: है यहाँ, ना कोई दूसरा हुसैन। अच्छा, इसमें एक स्टैंजा मुझे बहुत पसंद है, कहता है कि शहीद करबला का गम जिसे भी ना गवार है, शहीद करबला का गम जिसे भी ना गवार है, वो बदअमल है बदनसब उसी पे बेशुमार है। अरे ओ दुश्मने अजा, अरे ओ दुश्मने अजा, तू मर जरा लहद में जा, पता चलेगा क्या हुसैन है मेरा, हुसैन है पता चलेगा क्या हुसैन है।
1: माशाल्लाह
0: बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, खुश रहें जी, आप भी आबाद रहिए। और टाइम महदूद है, आपकी कॉल ज्यादा है, मैक्सिमम कॉल्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर।
2: वालेकुम सलाम निशान भाई, कैसे हैं
0: जनाब? कैसे हैं? आपने लास्ट प्रोग्राम सुना था, तो मैंने तो सब कुछ खोल के बता दिया कि मैं कब लाहौर आ रहा हूँ, कहाँ आ रहा हूँ, कैसे आ रहा हूँ, तो आपने सुना था लास्ट का प्रोग्राम?
2: सॉरी सर, मैं मंडे बालदेन से बात कर रहा हूँ, आप जो है लाहौर जा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको।
0: मैंने तो आपसे पूछा ही नहीं कि आप लाहौर से या मंडी बालदेन से, मैंने सर ये पूछा कि लास्ट प्रोग्राम में आपने सुना था कि नहीं सुना था।
2: मैंने नहीं सुना था, क्योंकि मैंने सोचा कि शायद मुहर्रम की वजह से भी अब ना कर रहे हैं।
0: यार मुहर्रम के पहले 10 दिन प्रोग्राम नहीं किया, अब जितने प्रोग्राम किए सारे के सारे वाकया करबला से रिलेटेड।
2: तो जो मतलब मैंने फोन किया तो आपने बताया कि इमाम जैनुलाबदीन की शहादत का दिन है।
0: हाँ जी।
2: जनाब मेरी सेहत बहुत खराब है, मुझे ना एक ऐसी बीमारी है, किसी डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही, जब शहादत बयान करेंगे ना
0: जी,
2: तो रोती हुई आंखों से मेरे लिए दुआ करना, हो सकता है किसी सुनने वाले की और आपकी दुआ की वजह से अल्लाह ताला मुझे एक नई जिंदगी दे दे।
0: मैं बिल्कुल जरूर इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
2: तो अगर आपकी इजाजत है तो इमाम हुसैन की बारगाह में उसी कलाम के दो शायर पेश कर दूं।
0: कर दें जी, कर दें।
2: छुपा

0: जी भाई
1: माशाल्लाह जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं
0: यकीन लगवाने के नाले भाई को दुआ का कहना था भाई प्लीज मेरे लिए दुआ करना।
1: मैं बिल्कुल शहादत पढ़ने से पहले एक मुश्तरका दुआ करूंगा, आप जरूर आमीन कहिएगा उसमें, ठीक है
0: जनाब? बड़ी मेहरबानी, अल्लाह
1: हाफिज़। आमीन आमीन आमीन आमीन। 051-111-0101 दैट इज द नंबर टू डायल ऑन। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, ओके, अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो हेलो कॉलर, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम, कैसे हैं
1: जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कौन बात कर रही हैं?
2: नसरीन गोड़ला शरीफ से।
1: जी गोड़ला शरीफ से नसरीन, क्या हाल है?
2: अल्लाह का शुक्र। मैं ना आपसे पूछना चाहती हूँ कि मुझे ना कभी आज के प्रोग्राम में बता दे या फिर कभी बता दे कि आपके पास टाइम हो तो मैं ना सर इमाम हुसैन के बारे में जानना चाहती हूँ कि कर्बला से पहले ना कब उनकी जिंदगी थी, आप कहते हैं ना कभी वसा था हुसैन, तो वो उनकी जिंदगी थी वो उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ कि वो जिंदगी में कैसे थे। जैसे बंदा कहते हैं ना कि आप कहते हैं कि जिससे इश्क हो उसकी बातें आपने भी नजर आनी चाहिए, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पता चले कि उनकी जिंदगी कैसी थी, वो क्या पसंद करते थे, क्या नहीं पसंद करते थे, किस तरह उनकी जिंदगी थी।
1: मैंने नसरीन ये जो दोनों इमाम हैं, जो दोनों भाई हैं, इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैंने इन दोनों की जिंदगियों को मुताला किया, इनका भाई से इंसान जितना किया जा सकता है हम्बल कैपेसिटी में। इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की पर्सनैलिटीज दोनों यकसा मुख्तलिफ थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो लिबास पहनते थे उस दौर के बादशाह गवर्नर अपने मातहत लोगों को गुलामों को भेजते थे और कहते थे कि जाओ देखो मक्का में मदीना में एक शख्स रहता है जिसका नाम हसन है और देखो वो आज कैसा लिबास पहनता है आजकल और वैसा ही लिबास वापस आके हमारे लिए तैयार करो। इमाम हसन अलैहिस्सलाम जिस गली से गुजरते थे जिस जगह बैठते थे लोगों को घंटों बाद पता चल जाता था कि यहाँ से इमाम हसन अलैहिस्सलाम गुजरे हैं या मौजूद रहे हैं। वो जो खुशबू लगाते थे वैसे तो जाहिर है उनके जिसमे अतर किसी खुशबू के मोहताज नहीं, लेकिन जो खुशबू बतौर सुन्नत भी है जो लगाया करते थे तो बहुत कम लोग थे जो अफोर्ड कर सकते थे या लगा पाते थे। तो एक बहुत ही एक शहजादे तो थे ही, इसमें तो शक कोई है ही नहीं, दीन दुनिया के शहजादे थे, लेकिन उनकी जिंदगी भी सचमुच शहजादों वाली थी। दूसरी जानब जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे उनकी जिंदगी यकसा मुख्तलिफ थी, दोस्त ज्यादा नहीं थे, बहुत ज्यादा कपड़ों वगैरह के मामले में आप यूं कह लीजिए कि लिबास के मामले में बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहा करते थे, तन्हाई पसंद थे, सादा खुराक खाते थे, सादगी पसंद थे, तो यकसा लाइफ दोनों भाइयों की मुख्तलिफ थी। लेकिन हमारे लिए दोनों ही मशले रहा है। बार कैफ आपने पूछा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हवाले से अगर मैं चीदा चीदा आपको अभी बता सकूं तो वो यही है कि तन्हाई पसंद थे, दोस्त कम थे, गहरी सोच में रहते थे। जाहिर है अमानत बहुत बड़ी थी उनके कांधों पे, बहुत बड़ी अमानत थी जो उन्होंने पहुंचाई है, जिसका फर्ज अदा किया है, जो अमानत उन्होंने आफियत के साथ पहुंचाई है, बहुत बहुत बड़ी अमानत थी, बहुत मुश्किल अमानत थी वो, ठीक है।
2: मुझे इन बातों का पता तो नहीं था, मैं पूछना आपसे चाहती थी, आपने बताई है मुझे, लेकिन मेरी जिंदगी में भी इसी तरह है कि मैं मेरी कोई सैलरी नहीं है, कोई मेरी किस्म से कोई इस तरह नहीं है, मैं बहुत तनहाई में रहती हूँ, तो मुझे भी ये बातें थोड़ी है, लेकिन मैं वो आप कहते हैं ना कि जिस इश्क हो तो उसकी झलक नजर आनी चाहिए आपने भी।
1: लेकिन नसरीन ये झलक खुदा से दुआ करें कि ये झलक आपके अंदर ना ही नजर आए, उसकी वजह ये है कि सिर्फ तन्हाई पसंद या सादगी पसंद या दोस्तें ना होने तक मोहित नहीं है ये झलक, खुदा ना करे।
2: वो तो नहीं कर सकता,
1: मैं वही अर्ज आपसे कह रहा हूँ, मैं वही अर्ज आपसे, मैं देखे सुने मेरी बात सुने नसीम, मेरी बात सुने, हमेशा एक सुनने की आदत जरूर अपनाए, पता नहीं हमारे पाकिस्तान में लोगों को बात सुनने की आदत क्यों नहीं है। ये एक जुमला जो आप बोल जाते हैं मैं भी बोलता हूँ, हम में से बहुत सारे लोग बोलते हैं, अक्सर आपको सुनने को मिलता होगा कि हम वो तो नहीं है, हम वो कैसे करें। देखे करना पड़ता है आपको, अगर किसी से इश्क है या मोहब्बत है तो फिर आपको अपने किरदार को उस मयार पे ले जाना होता है। नोबडी इज सेइंग ना दोबारा करबला होनी है ना दोबारा किसी का हौसला है हुसैन अलैहिस्सलाम जितना कि वो कर्बला बपा कर पाए, लेकिन हम वक्त के यजीद के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, हम वक्त के किसी जालिम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। अगर आज का शख्स वक्त के जालिम के सामने खड़ा नहीं होता और जो गुजरा हुआ यजीद है या गुजरा हुआ जालिम है उसको गालियां देता है या उसको बुरा भला कहता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यजीद जिंदा होता या जो लोग उस दौर में थे, अगर हम उस दौर में होते तो बल्कि खुदा का शुक्र अदा करें कि शायद हम नहीं थे। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है जो खुदा ताला ने हमारे ऊपर से टाला है, मैं हकीकत बता रहा हूँ आपको। ये अभी बात मेरी सुनाना बड़ा आसान है, आप लोगों का सुनना बड़ा आसान है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में आंसू बहाना खुशकिस्मती सही लेकिन कदरे आसान है। लेकिन आप जरा सोचिए कि अगर आज वक्त का कोई ऐसा जालिम यजीद हो जिसके खिलाफ हमें खड़ा होना पड़ जाए तो क्या हम खड़े हो सकते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना। सो इसलिए झलक से मुराद कतन ये नहीं है कि आप माजल्ला ना अली अकबर जैसे हमारे बेटे हैं, ना जनाब अली असगर जैसे, ना हजरत अब्बास जैसे, हम तो खैर वो तो एक मामला ही और है, लेकिन हम कम से कम हक की बात तो कर सकते हैं। अगर हम हक की बात नहीं करते हैं, हक को हक नहीं कहते हैं, जालिम को जालिम नहीं कहते हैं, तो फिर हम तन्हाई पसंद भी हों तो फिर वो तन्हाई हमारी सिर्फ पसंदीदगी तन्हाई है, हुसैन की तन्हाई में बहुत फर्क है। ठीक है
2: वो नहीं
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।

जो लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं एफएम 101 ऑफिशियल फैन पेज के ऊपर पोस्ट मौजूद है, हाथ जुम्बिश नहीं दे रहे तो ये हाथ अपने बचा के रखिए। टिकटॉक देखिएगा, इंस्टा पे रील्स देखिएगा, अभी बचा के रखें इन हाथों को ताकि मुझे बिल्कुल पता ना चले मेरी आवाज़, मेरी गुफ्तगू आप तक पहुँच रही है, मेरी बात आप समझ पा रहे हैं ना समझ पा रहे हैं, मुझे आप इसी कश्मकश में रखिए। इन हाथों को बिल्कुल कोई अजियत आपने नहीं देनी, ये हाथ संभाल के रखिए ताकि ठीक 1 बजे जब मैं शहादत शुरू करूं और 2 बजे शहादत ख़त्म करने के बाद जब मैं यहाँ से चला जाऊं तो फिर जब आप टिकटॉक देख सकें या रील्स देख सकें और उसके ऊपर कमेंट्स कर सकें, कोई कोई मसला नहीं है, ठीक है।

चले मैं बिना गुफ्तगू को खोले आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ, क्योंकि अगर आप ये दो तीन जुमले ना समझ सके तो फिर मेरी गुफ्तगू को मैं खोल भी दूँ तो वो बेमाने हो जाएगी, और ये बहुत कीमती बात है, मैंने कभी किसी से शेयर नहीं की है। आज दिल में आया कि शेयर करूँ तो कर रहा हूँ, फिर उसके बाद हम जिक्र की तरफ, शहादत की तरफ पढ़ रहे हैं। एक बज गया। अभी कुछ अरसा कबल की बात है, कोई शायद 3 4 महीने की, मैं एक जगह गया तो जिस जगह पर मुझे बुलाया गया, मुझे कुछ खिला दिया गया। ये मैंने कभी नहीं शेयर की है बात किसी से।

दिसंबर की बात है, आई वेंट समवेयर और वहाँ पे मुझे कुछ खिला दिया गया किसी तरह से। मैं 2-2.5 घंटे वहाँ पे मौजूद था। जैसे ही मैं अपनी गाड़ी में आके बैठा तो मेरी हालत गैर होना शुरू हुई और एक टाइम ऐसा आया कि मैंने गाड़ी पार्क की और जो फुटपाथ होता है, जो ग्रीन बेल्ट होता है, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वालिदा ना सुन रही हूँ ये प्रोग्राम, तो जो ग्रीन बेल्ट होता है मैं वहाँ पे बिल्कुल जैसे आप इंसान फेंट हो जाता है, उसको कोई कोई किसी किस्म का जो है वो होश नहीं होता है कि उसके आसपास क्या है क्या नहीं है। तो लेकिन इतना मुझे अकल ने मेरे काम किया कि मैं जिस ग्रीन बेल्ट के आसपास मार्केट मुझे नज़र आई, मैंने वहाँ पे गाड़ी स्टॉप की कि अगर फॉर एग्जांपल मैं जामबर ना हो सकूँ दोबारा, तो एटलीस्ट यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं वो मुझे मेडिकल हेल्प तक पहुँचा पाए। तो जहाँ मैं था वहाँ पे इतनी आबादी नहीं थी जब मैं वहाँ से निकला, तो मैंने कोशिश की कि मैं जैसे ही इस्लामाबाद के किसी मेन सेक्टर पे जहाँ पे आसपास मार्केट हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप जो है सारी रात होटल्स खुले रहते हैं। अब तो खैर लॉकडाउन का थोड़ा सिलसिला है, लेकिन उस टाइम पे लॉकडाउन वाला मामला नहीं था। तो मैंने जैसे ही देखा कि वो ऐसा ग्रीन बेल्ट है जिसके लेफ्ट राइट पे मार्केट है, कैफेज़ हैं, लोग बैठे हुए हैं, रात का तकरीबन कोई 1:30-2 बज रहा था, तो मैंने गाड़ी वहीं पे साइड पे लगा कि मैं थोड़ा सा वहाँ पे गया। मुझे लगा कि शायद मैं वमिट करूँगा तो थोड़ा कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन उसके दौरान मेरी हालत और गैर हुई और मैं वहीं पे फेंट हो गया। उस दौरान मेरे पास एक शख्स आया और मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे आसपास कुछ नहीं है, मतलब आसपास के जो लोग हैं मुझे उनकी आवाज़ें नहीं आ रही थी, मुझे आसपास जो चीज़ें हैं वो धुंधली महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सारी दुनिया से मैं डिस्कनेक्टेड हूँ और ये कोई और दुनिया है जहाँ पर मैं और वो शख्स हैं। उसने मुझे यूँ उठाया, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रोड के उस तरफ ले जाके कुर्सी पर बिठाया, पानी पिलाया और मेरे सीने पे यूँ हाथ रखे, कहते कुछ नहीं होता कुछ नहीं होता। और दोबारा जब मेरी आँख खुली तो मैं एक हॉस्पिटल में था।

घबराने की बात ये नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें कभी शेयर नहीं करता, इसलिए नहीं कि लोग क्या सोचेंगे या क्या, इसलिए कि शायद मुझे लगता है और मुझे मेरे जो मेंटर हैं उन्होंने बहुत दफ़ा जब मैं जिक्र होता है मेरा उनके साथ तो वो यही कहते हैं कि ख्याल रखो और ख्याल रखो। आज दिल में आई, मैं हमेशा अपने दिल को अपना गवाह मानता हूँ कि दिल में आई कि आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैंने कहा कि मैं ओपन अप नहीं करूँगा जो भी गुफ्तगू है या जो भी बात हुई, क्योंकि अगर मैं ओपन अप कर दूँ तो फ़ायदा कुछ नहीं है, और अगर आप बिना ओपन हुए समझें चीज़ों को तो सिर्फ मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप कोशिश करें तो ताल्लुक बन पाता है। सिर्फ एक जुमला कहूँगा फिर आगे बढ़ेंगे। बार कैफ, हैरानी की बात ये नहीं है, हैरानी की बात ये है कि अभी 9 मुहर्रम जो अभी गुजरी है, ये 10-12 दिन पहले, आज गालिबन 25 मुहर्रम है, 15 दिन पहले 9 मुहर्रम जो G6 यहाँ पर सबसे बड़ी इमाम बारगाह है, जहाँ पर शब आशूर की मजलिस बपा होती है, जहाँ पे अजान अली अकबर अलैहिस्सलाम का अहतमाम था, ठीक रात का टाइम था, तकरीबन मजलिस रात को 12-1 बजे होनी थी, क्योंकि वो अलामा साहब ने पढ़ना था और उसके बाद अजान अली अकबर और दैन फिर मुझे हमें घर जाना था। मेरी वालदा मेरे साथ थी लेकिन वो खवातीन की साइड पे थी, मेरा फ़ोन बंद हो गया था और फ़ोन में बैटरी नहीं थी, तो मैंने अपनी अम्मा से कहा था कि अम्मा अगर मेरा फ़ोन बंद भी हो जाए तो बस जैसे ही अजान अली अकबर हो जाए तो आपने वापस इस गाड़ी के पास जो हमारी गाड़ी उस पर आ जाना, मैं वहीं पर आ जाऊँगा। तो अम्मी कहती हैं ठीक है। खैर मैं वहाँ पर बैठा, बिल्कुल ठीक था, कोई इशू नहीं था। आप यकीन करें कि जैसे ही जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब शुरू हुए, 15-20-25 मिनट गुजरे होंगे, मेरी हालत गैर हो गई, और इतनी गैर हो गई कि मुझे बकायदा फर्श अज़ा से उठ के बाहर आना पड़ा और साइड पर मैं बैठ गया। मुझे यही लगा कि शायद मेरा बीपी डाउन हो गया है या कोई और इशू है, और वोमिट करने लगा। वो उस वोमिट के दौरान

फेंट हो गया। उसी दौरान एक शख्स आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा, साइड पे लेके गया, कहा यहां बैठो, पानी ला के दिया। और दोबारा जब मेरी आंख खुली तो मैं वहीं फर्शे अज़ाब पे था। आंख खुली से मुराद जब मुझे थोड़ा सा होश आया, मैं गनूदगी से बाहर आया। लेकिन यहाँ पे जो काबिले गौर बात है वो ये है, वो जो शख्स दूसरी दफा आया वो वही शख्स था जो पहली दफा आया।

बात खोल नहीं सकते तो ये बात कह दो, शायद किसी के लिए अगर बात अभी भी मुश्किल है तो किसी हद तक आसान हो जाएगी। आप ये फिक्र रहिए, मैं जिक्र करने आया हूँ, मैं शहादत पढ़ने आया हूँ, मैं पढ़ के जाऊँगा। मकसद यहाँ पर आ जाने का शहादत पढ़ना था, मैं पढ़ के जाऊँगा, बस मुझे 10-15 मिनट और दें। इस वाक़े को मजीद ना खोलते हुए एक मिसाल सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ, जो मिसाल अभी दिल में आई है।

अब जो बात मैं करने लगा हूँ, जो लोग ग्लासेस पहनते हैं शायद वो बेहतर अंदाज में समझ पाएंगे। मैं जुमला कह दूंगा, उससे आगे जुमला बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि जुमला उससे आगे बढ़ाऊंगा तब भी मुश्किल है, उसको घटाऊंगा तब भी मुश्किल है। मैं जुमला कह दूंगा, आपकी किस्मत है, जितना समेट सकते हुए उसको समेट लेना।

जो लोग ऐनक लगाते हैं वो शायद मेरी बात किसी हद तक बेहतर समझ पाए। एक बार मैंने ग्लासेस लगाई हुई थी और मैं 15-20 मिनट अपनी ऐनक ढूंढ रहा था। मेरी ऐनक कहाँ है, मेरी ऐनक कहाँ है, अम्मी कहाँ रख दी, अम्मी यहीं पे पड़ी थी, कहाँ रखी है। वो जो डोमेस्टिक हेल्प आती है, बाजी आती है, उन्होंने तो कहीं नहीं रख दी। तकरीबन 10-12 मिनट में ढूंढता रहा और अचानक मैंने शीशा देखा तो मुझे लगा कि जिस चीज को मैं ढूंढ रहा हूँ वो तो मैंने पहन रखी है। कभी कभी कुछ चीजें हमारे सामने होती हैं, हम महसूस नहीं कर रहे होते हैं। हम अल अजल कहते रहे, हकीकत ये है कि कोई जमाना इमाम से खाली नहीं होता। मैं कह दिया, आप सुन लिया, इससे आगे ना बढ़ा सकता हूं ना घटा सकता हूं। मैंने कह दिया, आपने सुन लिया।

जब लोग कुछ नहीं कर सकते फिर वो आपकी सेहत पे वार करता है। बारकैफ, ये एक छोटा सा वाक्या, बहुत सारे वाक्यात में से मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं कभी कोई ऐसी बात ना करूं जिसमें सेल्फ मार्केटिंग या सेल्फ ब्रैगिंग का एलिमेंट नजर आए। पता नहीं क्यों आज दिल चाहा एक छोटा सा वाक्या, आप भी इसको इत्तफाक समझ के भुला दीजिएगा। मैं भी अपने आप को नहायत ही गुनाहगार बंदा समझ के जो खुशगुमानी अपने दिल में लिए बैठा हूँ इसको इत्तफाक समझ लेता हूँ। ये याद रखिएगा, कोई जमाना इमाम से खाली नहीं होता।

में से बहुत सारे लोगों का अक्सर ये सवाल रहता है ना, आप तो आप मेरे खानदान में से या मेरे जो रिलेटिव या दोस्त है उनका बहुत सवाल रहता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में जो इंसान चाहता है बहुत सारी चीजें वो है, अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। क्योंकि हमारे यहाँ ये देखा जाता है कि यार फाइनेंसेस अगर ठीक हैं तो फिर दूसरा जो सबसे पहला काम आपने करना है वो शादी करना है। यकीन जाने दो चीजें हैं शरीक हयात तक के सफर को तय ना करने की फिलहाल अभी तक की। एक तो ये कि किसी को मुसीबत में क्यों डालना। मुसीबत से मुराद ये चीज बहुत हौसला मांगती है। वो है ना कि वे माया मेरा जी करदा, बाखुदाई हकीकत है, बाखुदाई हकीकत है। बतौर मर्द मेरे पे अल्लाह ताला ने कुछ जिम्मेदारियां डाली हैं। मैं आपको आज बड़े खुले दिल की बात बता रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरा आज दिल कर रहा है, कहीं असाइनमेंट कंप्लीट ही ना हो गई हो। मैं आपकी इजाजत है मैं थोड़ा सा बात कर लूँ, गपशप लगा लूँ आपसे, मैं फिर उसके बाद मैं शहादत पढ़ता हूँ। मैं वैसे भी चाह रहा हूँ थोड़ा सा वक्त, जरा रात गहरी हो जाए तो मैं शहादत पढ़नी शुरू करूँ।

तो जो मैं अर्ज आपसे कह रहा था कि बतौर मर्द मेरे ऊपर अल्लाह ताला ने कुछ जिम्मेदारियां डाली हैं और वो जिम्मेदारियां मेरे मौला, मेरे सरकार, मेरे इमाम ने निभाई, मेरे रसूल अल्लाह ने निभाई, मेरे हुसैन ने निभाई। तो बतौर मर्द मेरे ऊपर, और ये मैं तमाम तरह लड़के जो सुन रहे हैं ये याद रखो, अल्लाह ने जो जिम्मेदारियां आपके ऊपर डाली हैं ये जिम्मेदारियां निभाना भी आपके लिए बाइस से इबादत और सवाब है। ये मत सोचो कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ और पीछे से आपकी वालदा है या आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं या आपसे जुड़े लोग हैं वो रोते रहें, बिलखते रहें, ख्वार होते रहें, भूखे रहें और आप कहें जी बस मैं तो राय हक की तलाश में निकल गया, ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इमाम अली ने नहीं किया। हमने वो करना है जो रसूल अल्लाह ने किया है, हमने वो करना है जो इमाम अली ने किया है, जो विलायत के सरदार ने किया है हमने वो करना है। बार कैफ आप यकीन जानिए अगर मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी ना हो तुम लोगों का आरजे फकीर है, इतना फकीर है वो है ना कि वे माया मेरा जी करता घर छड़ के मलंग हो जावा वे माया मेरा। लेकिन मसला ये है कि जब आप किसी के साथ जिंदगी में शामिल होते हैं आप तो मलंग बनना चाहते हैं, दूसरा तो नहीं चाहता। तो पता नहीं आपकी खलवत को समझे, आपकी तन्हाई को समझे, आपके इन लम्हात को समझे न समझे, उसको तो आप जिंदगी की रानाइयों में, रोशनियों में वैसे ही चाहिए। इंसान कोशिश करता भी है और करनी चाहिए भी, अगर आप किसी को जिंदगी में ला रहे हैं फिर तो करें लाजमी। वो अलग बात के हो कोई बांधे बाजू पे इमाम जामन और कहे तुझे खुदा के हवाले किया, खुदा हाफिज। वारल्ला।

मकामे दिल कहाँ है, खुदा जाने मकामे दिल कहाँ है, खुदा जाने मकामे दिल कहाँ है। दुनिया घूम ली, हर वो काम कर लिया जिसकी कभी ख्वाहिश जिंदगी में रही, पर खुदा जाने मकामे दिल कहाँ है, कहाँ है।

0: बस मुझे चंद लम्हा दीजिएगा, मैं कैफियत में आ जाऊँ, उसके बाद फिर जिक्र शुरू करते हैं। आज जिन लोगों ने अभी अभी शुरू किया है सुनना, मैं उनको बताता चलूँ कि आज के दिन यानी कि 25 मुहर्रम का दिन मंसूब है शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से। ठीक 5 मिनट के बाद मैं शहादत पढ़नी शुरू करूँगा।
1: ए हुस्न हकीकी नूर अजल तन।

आपको मेरी आखिरी गुफ्तगू याद है जो मैंने पिछले प्रोग्राम में की थी, वहीं से मुत्तसिल करेंगे बात को और वहीं से शुरू करेंगे और फिर मैं शहादत की तरफ चला जाऊंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया गया दरबार में गुफ्तगू के लिए, बात करने के लिए, याद है आपको?

امام حسین علیہ السلام ملاقات کے بعد واپس اپنی حویلی آ گئے. 40 حویلیاں ہیں امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، ہاشمیوں کی 40 حویلیاں ہیں جن کا مشترکہ جو صحن ہے وہ ایک ہے. آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک صحن ہے اور 40 حویلیاں ہیں، 40 دروازے ہیں جن کے منہ کھلتے ہیں اس ایک ہی صحن کی طرف. امام حسین علیہ السلام چونکہ دربار میں گئے ہیں، بہنیں صحن میں کھڑے ہو کے انتظار کر رہی ہیں. ہر گزرتا لمحہ بہنوں پر بھاری پڑ رہا ہے. چونکہ امام حسین علیہ السلام سب کو واپس بھیج چکے ہیں سوائے حضرت عباس کے، سب واپس آ چکے ہیں، جن میں محمد حنفیہ ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں، امام علی کے بیٹے ہیں، جن میں امام سجاد ہیں، جن میں جناب قاسم ہیں، جن میں جناب علی اکبر ہیں. سبھی مرد گھر میں موجود ہیں، عورتیں گھر میں موجود ہیں. اسی اثنا میں امام حسین واپس تشریف لائے. امام حسین علیہ السلام کے قدم مبارک واپس اپنی حویلی میں پڑے، بہنوں نے چہرہ دیکھا، شکر خدا کا ادا کیا. امام حسین نے کہا، میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، میں بطور امام تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ آج کچھ نہیں کر سکیں گے. بارکیف گفتگو طویل ہے، اگر کوئی حق کا متلاشی ہو تو کتابوں میں روایات موجود ہیں، آپ ضرور پڑھیے. میرا مقصد آج کچھ اور ہے، میں اگر اس طرف گیا تو پھر ہم اس حوالے سے لیفٹ رائٹ ہو جائیں گے، آج کا موضوع کچھ اور ہے. بارکیف لمبی گفتگو ہے، طویل گفتگو ہے، لب لباب یہ ہے کہ بہنوں نے، بھائیوں نے، بیٹوں نے، بھتیجوں نے پوچھا کہ مولا حسین کیا کہا اس نے. مولا حسین نے فرمایا کہ دو باتیں، یا کہا کہ بیعت کر لو، بیعت نہیں کرنی تو پھر یہ جگہ چھوڑ کے جانی پڑے گی، کہیں اور آباد ہو جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ. یا تو پھر بیعت کر لو، یا تو مان لو کہ میں کردار کا اچھا آدمی، میں ایک اہل آدمی، اسلام کی پگ میرے سر پر ہو تو تمہیں اعتراض کوئی نہیں، یا تو ببانگے دوہل میری بیعت کر کے یہ اعلان کر دو کہ نہیں کرنا تو پھر کہیں اور جا کر آباد ہو جاؤ، ہجرت کر لو، اس مدینہ کو چھوڑ دو جس مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کاندھے پر اٹھا کے گھومتے رہے، اس مدینہ کو چھوڑ دو جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدے کی حالت میں رہے اور تم کاندھے پر سوار رہے، عبادت انتظار کرتی رہی، کھڑی رہی، حسین بیٹھا رہا. یا تو پھر میری بیعت کر لو، یا پھر اس مدینہ کو چھوڑ کے چلے جاؤ جہاں پر تمہارا سارا بچپن گزرا ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے لیے سب سے مشکل لمحات یکم محرم سے 10 محرم عصر تک سب سے جو مشکل لمحات ہیں وہ شب عاشور ہوتی ہے. مولا حسین علیہ السلام چند لمحات کے لیے سوچئے، سامنے بہت سارے لوگ وہ بھی ہیں جو جانتے ہیں حسین کون ہے، باقی لوگوں سے چھپا رہے ہیں، باقی لوگوں سے چھپا رہے ہیں، خود جانتے ہیں حسین کون ہے، بچپن سے جانتے ہیں. کبھی حسین اپنے بچپن کو یاد کرتے ہوں گے، کبھی اپنی بہنوں کے خیموں کی طرف دیکھتے ہوں گے، کبھی 4 سال کی سکینہ کو دیکھتے ہوں گے، کبھی 6 ماہ کے اصغر کو دیکھتے ہوں گے، کبھی عباس جیسے شیر کو دیکھتے ہوں گے جو ہاتھ مل رہا ہے، مولا ایک بار اجازت دے میں ان سے پوچھوں، انہوں نے ہمارا علی اکبر نہیں مارا، انہوں نے ہمارا قاسم نہیں مارا، انہوں نے پانی سے دور ہمیں خیمے لگانے کو کیسے کہا، مولا ایک بار مجھے اجازت دے میں ایک سے پوچھوں کہ کون ہے وہ جس کو بیعت چاہیے تجھ سے. بارکیف مولا حسین واپس آئے، گفتگو کا لب لباب بتایا کہ یا کہا جا رہا ہے کہ بیعت کر لو، یا پھر ملک چھوڑ دو، وطن چھوڑ دو، ہجرت کر لو، شہر بدر ہو جاؤ، ملک بدر ہو جاؤ، کہیں اور آباد ہو جاؤ. بہنوں نے سوال کیا، حسین اب؟ یہ سوال بہنوں کا بھائیوں سے بھی تھا اور ان کا اپنے امام سے بھی تھا. خدا کرے
कोई जुमलों का खरीदार यहां पर बैठा हो, मैं जुमले कह रहा हूं दामन में लपेटते आइएगा। हुसैन, अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, मैंने ये सोचा है कि बैत तो नहीं करूंगा, बैत तो नहीं करूंगा। जो हक के मुतलाशी हैं, कभी रवायात पढ़िएगा, किताबों से दोस्ती लगाइए। यजीद को बहुत पहले किसी ने कहा था कि चार लोगों से बैत लाजमी ले लो, चार लोगों से बैत लाजमी ले लेना। अगर चार लोगों ने बैत कर ली तो यूं समझ लेना कि सभी ने तुम्हारी बैत कर ली, इतने मजबूत लोग हैं। जिनमें से एक नाम हुसैन का था, और पैगाम पहुंचाने वाले ने यह भी कहा था, ये याद रखना कि और कोई करे न करे, मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं कि हुसैन नहीं करेगा। तो कोशिश करना कि जल्द अज जल्द उसको बैत करने का कहना, और अगर वो बैत न करे तो उसको ज्यादा मोहलत ना देना। आपका मिजाज जहां पर मुझे लगा कि मसाइब के लिए तैयार है, मैं वहीं से शहादत को शुरू कर दूंगा। बार कैफ बहनों ने पूछा, भाई क्या सोचा? बायत तो नहीं करूंगा, बायत तो किसी सूरत नहीं करूंगा, मुझ जैसा है जैसे कि बैत कैसे करेगा। हां, वतन छोड़ सकता हूं, कुछ लोग हैं भी जो इससे बहुत तंग हैं, मुझे नुसरत के लिए बुला रहे हैं, मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुस्लिम, तो मेरे सफीर बन के जाओ, कूफा जाओ, वहां पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी नुसरत का इंतजार कर रहे हैं, मुझे बार बार बुला रहे हैं। जी आका, ये कहना था। दूसरी बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाई, अब कौन है जो मेरे साथ चलेगा, जिसने उस सहन में सबसे पहले खड़े होकर कहा कोई जाए न जाए मैं जाऊंगा, उसका नाम था सज्जाद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्र 23 साल है, कड़ियल जवान, 23 साल उम्र है, बड़े बेटे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। जब हुसैन ने सवाल किया कौन जाएगा, तो सबसे पहले हाथ बुलंद किया उस सहन में, कोई जाए न जाए बाबा मैं साथ जाऊंगा। जनाबे हुसैन अलैहिस्सलाम खुश हुए, कहा बड़े बेटे हो, हक अदा किया है बड़े बेटे का, लेकिन एक सवाल है तुमसे। कहा बाबा क्या सवाल है? कहा मेरे सफर में दो तरह के जिहाद होंगे, एक होगा जिहाद अकबर, बड़ा जिहाद, और एक होगा जिहाद असगर। कहा बाबा जिहाद अकबर कौन सा है, जिहाद असगर कौन सा है? कहा 7 दिन भूखे प्यासे रहना, 7वें दिन पानी भी बंद हो जाना, 10वें दिन भूख प्यास का शिकार करके 9 लाख का 72 को घेर लेना, उस तीर से 6 माह के बच्चे को मारना जिससे हाथी को मारा जाता है, बाजू कलम कर देना, कलम हुए बाजू से घोड़े से जमीन पर आना, सजदे की हालत में खंजर चलना, लाशों पे घोड़े दौड़ जाना, ये सब जिहाद असगर है। फौरन उठे, कहा बाबा लाशों पर घोड़े दौड़ जाना, सजदे की हालत में गर्दन से जिबा कर दिया जाना, बाजुओं का कलम कर दिया जाना, कटे बाजुओं से घोड़े से जमीन पर आना, 6 माह के बच्चे को तीर से मार देना, 10 दिन भूखे प्यासे रहना, 9 लाख का 72 को घेरे में ले लेना,
तीन दिन लाशें बेगोरो कफन रहना। बाबा ये जिहादे असगर है, छोटा जिहाद है, तो फिर जिहादे अकबर कौन सा है? कहा सज्जाद, मैं नहीं जानता कितना का वजू हो गया इस जुमले के ऊपर। रात के इस आखिरी पहर इस जुमले को सुन के हाय करने वाले कभी अपनी किस्मत पे हाय ना करें। आपकी ये हाय बारोज़े मैशर हुसैन के हक में बतौर गवाही खुदा ताला की अदालत में पेश हो। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, सज्जाद जिहाद अकबर ये है कि जिसने कभी अपने अली जैसे बाप से भी बात ना की हो, उसको 36 शहरों के बदमाशों के सामने से गुजारना। सज्जाद जिहाद अकबर ये है कि 4 साल की बच्ची के हाथों में रस्सी बंधे होना। सज्जाद जिहाद अकबर ये है कि 53 महमल यानी कि 53 ऊंट घर से निकलें और जब वापस आए तो सिर्फ 3 रह जाएं। सज्जाद जिहाद अकबर ये है कि बीबियों का काफिला हो, हाथों में हथकड़ियां हों, लोग ताजियाने मार रहे हों, जिसके पास पत्थर हो वो पत्थर मारे, जिसके पास रेत हो वो रेत मारे, नेजों के ऊपर सर बुलंद किए गए हों, 36 मुल्कों से इस काफले को गुजारा जाए, फिर उस शराबी के दरबार में खड़ा किया जाए जो शतरंज खेल रहा हो, जश्न मना रहा हो, 9 अजाने मैं कह रहा हूँ तू सुन रहा है, मैं कह रहा हूँ तू सुन रहा है, 9 अजाने ये काफला उस दरबार में खड़े होकर सुने। कभी एक पांव थक के उठाए, कभी दूसरा पांव थक के उठाए, ताकत होने के बावजूद खामोश रहे इस काफले का सालार हो, वो जिहादे अकबर है। बता सज्जाद, मेरे साथ तय कर ले यहां पे, जिहादे असगर करेगा जिहादे अकबर करेगा? कहा बाबा मैं बड़ा बेटा हूं ना, बड़ा बेटा हूं आपका, मैं जिहादे अकबर करूंगा, बड़ा जिहाद मैं करूंगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने माथा चूमा, कहा खुश किया, हक अदा किया बड़े बेटे होने का। यही वजह है काफला चला है मदीने से, मक्का पहुंचा है, तेरे और मेरे रसूल के बच्चे हज अदा न कर सके, एहराम खुलवाए गए, काफला मक्के से कूफे की जानिब और कूफे से करबला की जानिब मोड़ा गया है। पूरे सफर में सज्जाद चुप खामोश, यही वजह है जनाबे अली अकबर छोटे बेटे हैं, सज्जाद बड़े बेटे हैं। दुनिया का कानून है अगर कोई जमीन खरीदी जाए तो किसके नाम लगाई जाती है? मैं सवाल कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, जवाब दीजिए। अगर जमीन खरीदी जाए तो बाप क्या करता है, किसके नाम लगवाता है, बड़े बेटे के या छोटे बेटे के? यकीनन नाम ऐसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं और यही बात है कि बड़े बेटे के, बड़े बेटे का हक है, पहला हक है उसका। जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मकाम पर पहुंचे, राहवार वहां से आगे नहीं जा रहा था। मौला ने कहा इस जगह का नाम, किसी ने कहा मारिया, मौला ने कहा कोई और नाम, किसी ने कहा लतश, मौला ने कहा कोई और नाम, किसी ने कहा मौला इसको करबो बला कहते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जगह खरीदी, जनाबे सज्जाद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कहा बाबा मेरा महाज करबला नहीं, मेरा महाज शाम है, मेरा महाज करबला नहीं है, मेरा महाज शाम है, करबला नाम लिखवाइए अली अकबर के, जागीरे अली अकबर।
آج تک کوئی شخص جناب سجاد کی شہادت مکمل نہیں پڑھ سکا۔ دامنے وقت میں گنجائش نہیں ہے اتنی۔ باقیوں کی شہادت ہے، جناب علی اکبر ہوں، جناب عباس ہوں، جناب حسین ہوں، جناب جون ہوں، جناب حبیب ابن مظاہر ہوں، جناب قاسم ہوں۔ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، با خدا رات کے ساخری پہر جو اس جملے کا مول ڈال جائے گا، با خدا خدا راضی ہو، اس پہ میری دل سے دعا ہے۔ ان سب کی مقتل پڑھنا آسان اس لیے ہے، وقت میں قید کر لینا اس لیے ہے کیونکہ ان سب کی مقتل گاہ ایک ہے، ان سب کی مقتل گاہ ایک ہے۔ جبکہ جس کی شہادت سے منسوب آج دن ہے، اس کی مقتل گاہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، بلکہ 36 شہر ہیں۔ 36 شہر۔ آپ کیا شہادت پڑھیں گے اس شخصیت کی جس سے امام بننے کے بعد پہلا سوال مستورات یہ کر رہی ہوں، امام سجاد تو وقت کا امام ہے، امام حسین علیہ السلام جیسے ہی پردہ فرما چکے اس دنیا سے ظاہری طور پر، تو اب وقت کا امام ہے، امامت کی پگ اب تیرے سر پر ہے، سوال تجھ سے بطور امام یہ ہے کہ آگ لگ جائے مر جائیں، جل کے مر جائیں، باہر غیر محرم ہوں، پردے کا ہے تمام نہ ہو، پردے کے لٹ جانے کا ڈر ہو، بطور امام پہلا سوال ہی جس سے یہ کیا جا رہا ہو کہ اب یہ بتا، بطور امام حکم دے کہ خیموں میں آگ لگ گئی ہے، جل کے مر جائیں یا باہر نکلیں، کوئی کیا شہادت پڑے گا امام سجاد علیہ السلام کی؟ پارکیف، امام سجاد علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ میں ہوں، آپ ہیں، ہم میں سے بہت سارے لوگ روزہ داری کرتے ہیں، جس بھی شکل میں کرتے ہیں، چاہے آپ روزہ رکھ کے کرتے ہوں، چاہے آپ فاقہ رکھ کے کرتے ہوں، چاہے آپ گریہ کر کے کرتے ہوں، چاہے آپ قرآن پڑھ کے کرتے ہوں، چاہے آپ نماز پڑھ کے کرتے ہوں، حسین کی محبت دل میں رکھ کے کوئی بھی عمل جو آپ بطور گریہ پیش کر رہے ہیں، میں سلام کرتا ہوں آپ کو، لیکن وہ عمل مکمل کر جانے کے بعد، چاہے آپ کا روزہ ہے آپ افطار کریں گے، چاہے آپ کا فاقہ ہے آپ اس کو کھولیں گے، چاہے آپ کسی جلوس میں ہیں وہ جلوس مکمل ہوگا، ختم ہوگا، چاہے آپ زنجیر زنی کر رہے ہیں، چاہے آپ کسی مجلس میں ہیں وہ مجلس مکمل ہوگی، جب تھک کے ہم سو جائیں گے نا، یہ وہ پہلا وقت ہوتا ہے جب پہلا تازیانہ امام سجاد علیہ السلام کی کمر پہ مارا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بس زحمتیں تمام، میں چند لمحات بہت کم پڑھ رہا ہوں، زحمتیں تمام، چند لمحات میں بس ختم کر رہا ہوں بات کو۔ آنکھ کا وضو کرانا مقصد ہے، رلانا مقصد ہے، مارنا مقصد نہیں، امتحان نہیں آپ کا نہ میرا۔ بارکیف، امام سجاد علیہ السلام کو قید کر لیا گیا، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے قافلے کو قید کر لیا گیا، 36 میں بار بار کہہ رہا ہوں، گریہ وہاں سے آ رہا ہے، اگر کوئی سننے کی طاقت رکھتا ہو، دیکھتے آنا، متا پاس نال سجاد ہو بھی۔ دار کیف، 36 شہروں سے گزرتا ہوا قافلہ یزید ملعون کے دربار میں پہنچا۔ لائن جشن منا رہا ہے، اسی جشن کے دوران کسی کی نظر جناب سکینہ پہ پڑی، اس نے کہا، یزید میں نے بڑا ظلم کیا ہے کربلا کے اندر، کوئی کہہ رہا ہے قاسم زندہ تھا، میں نے گھوڑا دوڑا دیا، کسی نے کہا وہ جو 3 نوک والا تیر تھا نا، وہ میں نے مارا ہے اصغر کے گلے میں،
कोई कह रहा है ये देख खून आलूद कुर्ता हुसैन का, ये मेरे हाथ में है। कोई कह रहा है ये देख पगड़ी मेरे हाथ में है। किसी ने कहा यजीद मैंने भी बड़ा नुकसान किया है, बड़ा जुल्म किया है करबला के अंदर, मैं चाहता हूं मुझे इनाम दे, और इनाम में ये जो बच्ची है ना इसको मेरी कनीजी में दे। ये सुनना था कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम उठे, कड़ियों को तोड़ा, कहा ओ बदबख्त मुझे हुसैन रहने दे, अब्बास बनने पर मजबूर न कर। ये खुदा की रजा में राजी रहने वाले कह दिए, यजीद जैसों की जरूरत नहीं है। खुदा की रजा में राजी रहने वाले लोग हैं, शख्सियात हैं, वरना पानी क्या, बारिश नहीं हो सकती थी। हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम तो बात की बात है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अपने जोरे बाजू पे शक है क्या किसी को? वक्त का अली है, वक्त का अली है। उस शख्सियत की क्या, उस शख्सियत की क्या आप शहादत पढ़ेंगे जिसे रोज 4 साल की बहन ये सवाल करती हो, सज्जाद भाई, भैया सज्जाद ये परिंदे कहां जाते हैं शाम होने पर? सकीना जब शाम हो जाती है ना ये परिंदे अपने घर जाते हैं। कहा सज्जाद, कहा भाई हम भी अपने घर जाएंगे। यही वजह है कि जब मलाउन ने, यजीद ने ये देखा कि लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं तो इमाम सज्जाद को बुलाया, कहा तेरी कैद भी आजाद करता हूं, रिहाई देता हूं, कैद भी माफ करता हूं, जो माल लूटा थोड़ा बहुत वो भी वापस करता हूं, जा वतन वापस जा के दोबारा से जिंदगी शुरू कर। इमाम सज्जाद रोने लग गए, लोगों ने देखा, कहा सज्जाद रिहाई का परवाना मिला है, कैद आजाद हुई है, पहला कैदी देखा है जो रिहाई का सुन के रो रहा है। कहा कि इस आजादी का क्या करूं, वो तो मर गई है, वो तो मर गई है जो पूछती थी भैया सज्जाद ये परिंदे शाम होने पर कहां जाते हैं, ये परिंदे शाम होने पर कहां जाते हैं। जब जब किसी ने इमाम सज्जाद से पूछा इमाम नुकसान कहां हुआ करबोबला में, अली अकबर उतरे, जनाब कासिम उतरे, जनाब अब्बास उतरे, जनाब जॉन उतरे, जनाब अबीब इब्ने मज़ाहिर उतरे, जनाब सईद उतरे, आपके बाबा हुसैन उतरे, आंसू रोते रहे सारी जिंदगी और यही की बात कहते रहे, शाम शाम शाम, बड़ा नुकसान किया है, बड़ा नुकसान किया है शाम ने जनाबे सज्जाद का। कितना नुकसान किया है, 53 ऊंटों में से सिर्फ 3 ऊंट, मैं बार बार ये जुमला कह रहा हूं, पता नहीं कोई समझ पाए ना पाए, उन 53 ऊंटों पर बीबियां मौजूद थी। जब ये काफिला चला था तो 53 महमल, 53 ऊंट थे जिनकी निगेबानी हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के जिम्मे थी, जिसमें से अब सिर्फ 3 ऊंट मौजूद हैं जिनके ऊपर बीबियां सवार हैं। मदीने के दरवाजे के बाहर आकर रुक गए, आले बैत का काफिला शाम से रिहाई के बाद, जनाबे सज्जाद अलैहिस्सलाम 3 महमल के साथ, 3 ऊंटों के साथ, ऊंटों पर बीबियां मौजूद, मदीना के दरवाजे पर आकर रुक गए। किसी ने मनादी की, लोगो हुसैन का काफिला वापस आ गया। फटाफट जनाबे हनफिया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हैं, फटाफट गए, सुगरा अली अकबर आ गया है। अब सोचें जरा एक लम्हे, जिस बहन ने तकरीबन पूरा साल इंतजार किया हो भाई का, ना टेलीफोन है, ना व्हाट्सएप है, ना इंटरनेट है, ना कोई और बात करने का मौका है, ना खत व खताबत है, जिसने एक साल इंतजार किया हो उस बहन की कैफियत क्या होगी। एकदम उठी, अली अकबर, अली अकबर आ गया है,
जनाब हनफिया ने जनाब सुगरा को लिया, आगे आगे चलने लगे। कितना नुकसान किया है शाम ने जनाब सज्जाद का, सिर्फ उसका एक छोटा सा मंजर आपको दिखाना चाह रहा हूं। एक मकाम पे आकर जनाब हनफिया रुक गए, कहा रुकिए सुगरा रुकिए। कहा क्या हुआ, अब किस चीज का इंतजार है चचा? कहा मुझे लगा कि वो जो काफला है हमारा आले बैत का, उसके साथ कोई जईफ मर्द भी है। एक मिनट रुकिए, मैं जरा पर्दा करवा लूं। जिससे पर्दा करने को कहा जा रहा है वो इमाम सज्जाद हैं, जो पर्दा करने को कह रहा है वो हनफिया हैं। और घर में आपने खुद भी देखा होगा कि कुछ बच्चे कुछ लोगों से बहुत ज्यादा मानूस होते हैं, प्यारे वो सबको होते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूं, जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम सबको प्यारे थे, लेकिन सबसे ज्यादा उनकी जो मानूसियत थी, जो मानूस थे वो सबसे ज्यादा वो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से थे। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कभी अपने बच्चों को उस तरह प्यार नहीं किया, कभी औनो मोहम्मद को उस तरह प्यार नहीं किया जैसे जनाब अली अकबर को किया। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जब जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम का लाशा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेकर आए होंगे तो जनाब उम्मे लैला ने दिलासा दिया होगा जनाब ज़ैनब को, या जनाब ज़ैनब ने दिलासा दिया होगा जनाब उम्मे लैला को। उम्मे लैला जो कि हकीकी माँ थी जनाब अली अकबर की। बारकैफ शाम ने नुकसान इतना किया, जनाब सज्जाद बहुत मानूस थे, घर में सबसे ज्यादा मानूस अपने इन सच्चा के साथ थे, यानी कि मस्जिद जाना है तो जनाब हनफिया के साथ जाना है, कहीं बाहर जाना है तो जनाब हनफिया के साथ जाना है। वो एक चचा भतीजा, कुछ चचा होते हैं जिनके साथ बहुत बनती है कुछ भतीजों की, ये वो इनकी वो जोड़ी थी। इतना नुकसान किया है शाम ने इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का, 24 साल उम्र है, जनाब हनफिया पहचान नहीं पा रहे ये वही सज्जाद है। कहा बुजुर्ग सैयदजादियां इस काफले की जानेब आ रही हैं, उठो। कहा मुझे मत उठाइए, 10 मुहर्रम के बाद पहली मर्तबा है कि मैं अपनी मर्जी से बैठा हूं, वरना हाथों में हथकड़ियां गले में तौक, जहां एक सेकंड के लिए बैठा ताजियाने मार के उठाया गया। कहा कौन हो? जनाबे बाकिर ने आगे बढ़कर बताना चाहा, रोका इसलिए कि इतने अरसे के बाद जनाबे सुगरा जनाबे ज़ैनब को बीबियों को मिलेंगी, पहले ये दुख काफी नहीं है क्या कि जनाबे अली अकबर नहीं है, जनाबे कासिम नहीं है, मेरा ये हाल देखेंगे मजीद परेशान होंगी। जनाबे बाकिर को अपने बेटे को रोका, पांचवा इमाम है जनाबे बाकिर, बेटे हैं जनाबे ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के। जनाबे हनफिया ने देखा कि बुजुर्ग है, शायद जिस्म में जान मौजूद ना, उठ ना सकता हो। कहा अच्छा, उठ नहीं सकते तो कम से कम थोड़ा अपना चेहरा मोड़ लो, अपनी कमर इस तरफ कर लो ताकि तुम्हारी निगाह ना पड़े। पकड़ कर उठाना चाहा तो चीख निकली। जनाबे बाकिर ने कमीज उठाकर दिखाई तो ताजियानों के इतने निशान थे कि जनाबे हनफिया ने कहा, ओ बुजुर्गवार, तुझे छुड़ाने वाला कोई नहीं था। कहा मारने वाले तब्दील होते गए, मेरी कमर तब्दील ना की गई। इसी असना में जनाबे सुगरा करीब आई, जनाबे हनफिया को कहा कि इनको मत उठाइए। कहा क्यों? कहा मेरा दिल कहता है कि इसे कोई ना उठाए, इसका लहजा मेरे भाई सज्जाद से मिलता है, इसका लहजा मेरे भाई सज्जाद से मिलता है। ये कहना था जनाबे सज्जाद ने कहा, चचा की कमर से बाहर आओ, मैं तुम्हारा भाई सज्जाद हूं। चीख कर कहा, नहीं मेरा भाई तो 24 साल का है, आपकी तो कमर झुकी हुई है, दाढ़ी सफेद है, मेरा भाई तो 24। चचा की कमर से बाहर आओ, मैं तुम्हारा भाई सज्जाद हूं। चीख कर कहा, नहीं मेरा भाई तो 24 साल का है, आपकी तो कमर झुकी हुई है, दाढ़ी

अकबर तोड़ कमर गया है मेरा थी गया चमन तबाए डिठी माट दी बाजारा विच मेरा हो गई उमर तमाम है। जनाबे सज्जाद आगे बढ़े बार कैफ। जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़कर जनाब सुगरा को गले लगाया, पुरसा दिया जनाब अली अकबर अलैह सलाम का। जिंदगी आगे चल पड़ी। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, जो शख्स खून के आंसू रोता रहा उसके जिगर में बचा क्या होगा? और ये सिर्फ ये नहीं, एक सेकंड के लिए, कुछ लम्हात के लिए मैं आपको पीछे लेके जाऊं। पहचाने, गौर और फिक्र करें, क्या खतरा था दुनिया को इन लोगों से, वक्त के लोगों को क्या खतरा था इन लोगों से जिन जो इनके साथ ये सलूक किया गया। मेरा भरा फिर क्या चीते पवड़ा नहीं आ, फिरकों में तो पढ़ना ही नहीं है, बात सुननी है मोहम्मद वाले मोहम्मद की। चलो उस मोहम्मद की तो सुनो जिसका कलमा पढ़ रहे हैं। कभी अपने आप से बतौर इंसान एक सवाल तो करो, अपने आप से बतौर बशर एक सवाल तो करो कि क्या तकलीफ है, क्या डर था इन लोगों को कि ये किया गया इन लोगों के साथ। क्या मैं मिसाल देता हूं, इमाम अली अलैहिस्सलाम वो जहर बुझा, खंजर मारा गया कि जब तबीब के पास इमाम अली को पहुंचाया गया तो तबीब ने कहा कि जितना जहर आलूद वो खंजर था, कूफे के अगर हर मर्द को एक एक जरब लगाई जाती तो कोई मर्द ना बचता। इमाम हसन अलैह सलाम, पढ़ें रवायात, पढ़ें तारीख, पढ़ें जो जहर इमाम हसन अलैहिस्सलाम दूसरे इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दिया गया, वो जहर बकायदा मंगवाया गया एक शहर से, और जिस शहर से मंगवाया गया, जिस हकीम से मंगवाया गया, जब उससे मुतालबा किया कि वो जहर चाहिए तो इतना सख्त जहर था कि उसने कहा क्यों ये किसी हैवान को देना है ये जहर, कहा नहीं किसी इंसान को देना है। उसने कहा उसका जुर्म क्या है जो इतना सख्त जहर देते हो। फिर उसके बाद तीसरे इमाम हुसैन, नौ लाख का मजमा तन्हा तेरे और मेरे नबी का नवासा मौजूद। फिर उसके बाद इमाम सज्जाद। तो जो 10 साल खून रोया है उसके जिगर में क्या बचा होगा, क्या रहा होगा? जहर दिया गया अपने बेटे बाकर को, कहते हैं बाकर मेरे जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आ रहे हैं। इसी असना में जनाब सज्जाद की हालत खैर होना शुरू हुई। जनाब फिजा की नजर पड़ी, जनाब फिजा ने जनाब बाकिर को बुलाया, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के बेटे पांचवें इमाम, कुछ तलकीन की, कुछ पैगाम दिया जनाबे बाकिर को। क्या पैगाम दिया? शायर तखयल की दुनिया में लिखता है पंजवा लाल इमामत दा जदो पियूनू गुसल दिवावे, पंजवा लाल इमामत दा जदो पियूनू गुसल दवावे, जिथे घसन जंजीरा दे ख्याल नाल पानी पावे। इमामत के पांचवें मोती, जब अपने वालिद को गुसल दिलाना, जहां पर जंजीरों के निशान है वहां बड़े आराम से पानी डालना। पंजवा लाल इमामत दा जदो पियूनू गुसल दिवे में, जिथे घस हन जंजीरा दे ख्याल नाल पानी पावे, कंड जख्मी है तेरे बाबे दी हत नाल आराम दिलावे, कंड जख्मी है तेरे बाबे दी हत नाल आराम दिलावे।

या मेरे मालिक, या मेरे मालिक तुझे वास्ता है। बीबी फातिमा तो जारा की पाक चादर का, अपनी शान दा वास्ता ही, नबियां दे सुल्तान दा वास्ता ही, इमाम हुसैन दे कटे गले दा वास्ता ही, जनाब अब्बास दे कटे बाजुआं दा वास्ता ही, जनाब अली असगर दे कटे गले दा वास्ता ही, जनाब जैनब दे चादर दा वास्ता ही, बीमारे करबला दा वास्ता ही, जितने बीमार हैं कुल बीमारों को शिफाए कामला अता कर मेरे मालिक, जितने बेजुर्मों सजा असीर है मेरे मालिक, तुझे वास्ता है असीराने शाम का, सब की रिहाई का बंदोबस्त जल्द कर मेरे मालिक, मेरे मालिक जितने बे औलाद हैं तुझे वास्ता है जनाब अली असगर का, सबको नेक साले औलाद दीन के काम आने वाली औलाद नसीब फरमा मेरे मालिक, मेरे मालिक जो बहनें अपनी भाइयों की शादी के इंतजार में है मारे मालिक, किस्मत जनाब अली अकबर की बहनों की अपनी तुझे वास्ता है जनाब अली अकबर का, जनाब कासिम का, उनकी बहनों को अपने भाइयों की शादियां देखना नसीब फरमा मेरे मालिक, जनाब वहाब क्रिश्चियन थे, नई नई शादी हुई थी और शादी के बाद जैसे नई नई शादी के बाद घूमने जाते हैं, वो कहीं जा रहे थे अपनी बेगम के साथ, देखा कि काफला दश्तो बयाबा में मौजूद है, भूखा है प्यासा है, नहीं जानते थे कौन है, जब गुफ्तगू हुई पता लगा नवासा है रसूल है, मुसलमान हो गए, हुसैन को कोई देखे और मुसलमान ना हो, हाँ यजीद हो तो फिर बात अलग है, जिसके पास हिस्से का हुसैन पहुंच जाए वो मुसलमान ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, और जिसके पास पूरा हुसैन पहुंच जाए, जनाब वहाब की बेगम ने कहा मैं भी मुसलमान हुई, वहाब भी मुसलमान हुए, मैं इनका हाथ अपने हाथों से आपके हाथ में दे रही हूँ, वादा करें मुझसे जन्नत में मिलेंगे, बांदा इमाम जामिन तुझे खुदा के हवाले किया खुदा हाफिज। जनाब मुस्लिम के साथ जब कूफा वालों ने बेवफाई शुरू की तो कुछ मर्द थे जिनमें गैरत मौजूद थी, आ रहे थे, ज्यादा ज्यादा क्या होगा कत्ल हो जाएंगे, लेकिन बेवफाई नहीं करनी, वादा खिलाफी नहीं करनी, वो आते थे उनकी औरतें उनको पकड़ के वापस ले जाती थी। कहां वहाब की बेगम ने हाथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ में दिया जनाब वहाब का, क्या आपके हवाले किया आपको अता किया, मेरे से वादा करे जन्नत में साथ होंगे, मेरे मालिक सबको इश्क समझने वाली और इस पे चलने वाली हौसला बनने वाली शरीके हयात मेरे मालिक नसीब फरमा, मेरे मालिक जो इस दुनिया से रुखसत हो गए जिनकी कब्र पर फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं, हाजिरी देने वाला कोई नहीं, जुमला कुल मरहूम है इनके अपने शान के मुताबिक मगफरत फरमा मेरे मालिक, मेरे मालिक वो जा चुके हमने जाना है, हमें इस तरह से इस दुनिया से लेके जा कि तुझे पसंद आए, ऐसे नहीं कि जैसे किसी मुजरिम को पेश किया जाता है मेरे मालिक,

हर एक दिल में करबला, हर एक दिल में करबला बसा दिया हुसैन ने। जिस जिसको करबला वालों के एहसानात याद है, बुलंद हाथों से दुआ करना। हाथ बुलंद होता उसका है जिसको खैरात मिलनी हो।

शायर तखयल की दुनिया में लिखता है, जब मलून ने हुक्म दिया एक पॉइंट पर पहुंचने के बाद, एक जगह पर पहुंचने के बाद, जब यजीद मलून ने हुक्म दिया कि कैदियों को चला के मेरे दरबार में लेकर आओ, सवारियों से उतारो और चला कर मेरे दरबार में लेकर आओ, शायर तखयल की दुनिया में जनाब सज्जाद का मुकालमा लिखता है जनाब सैयदा जैनब के साथ कि ऐसा प्यो पुत्रा तेनु आख्या जैनब, ऐसा प्यो पुत्रा तेनु आख्या जैनब, साडे सफर तू तांगे ला दे, बस्ती रवे आ पाग मदीने वेच, बस्ती रवे आ कोल मा दे, हुण पैदल टुरन दा हुकम जे आई, हुण पैदल टुरन दा हुकम जे आई, खुदा सलामत रखे उस आंख को जो रात के साखरी पैर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों के गम में हाय करके रो रही है, हुण पैदल चलन दा हुकम जे आई, उमर वंजी पुत्र सजा दे, हुण पैदल टुरन दा हुकम जे आई, मरवंजी पुत्र सजा

भाई वाह हुसैन, वाह हुसैन। इस वक्त जो भी कर रहे हो, बिस्तर पे मौजूद हो, ऑफिस में मौजूद हो, गाड़ी चला रहे हो, हाथ बुलंद करके मेरे साथ कहो वाह हुसैन, वाह हुसैन, वाह वाह वाह वाह हुसैन। वा, वा, वा, वा, वा, वा, वा,

मेरा बाप से एक सवाल है, अपने सोच के घोड़े मेरे साथ दौड़ाइएगा, बस 5 मिनट अल्लाह हाफिज करो, खत्म हो गई गुफ्तगू, खत्म हो गई बात, खत्म हो गए मसाइब। मेरा एक सवाल है आपसे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से जाहिरी तौर पर पर्दा फरमा के गए, उन्होंने 2 चीजें आपको दी थी, वो क्या थी? आपके हवाले 2 चीजें करके गए थे। ऐ लोगों, मैं 2 चीजें तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, इसके साथ रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। वो 2 चीजें क्या थी? कायदा अल्फाज ये है लोगों, शायद आने वाले साल तो मुझे यहाँ पर था, देखो मैं 2 चीजें तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, इनको साथ रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे।

चार सुनो चराग का, चराग का पता कोई नहीं, शब का आखिरी चराग हूँ, पता कोई नहीं जिंदगी का, मेरा पढ़ना आखिरी हो, तेरा सुनना आखिरी हो, जिंदगी किस मोड़ पर साथ छोड़ जाए पता कोई नहीं, डर है कोई नहीं इसलिए क्योंकि डर उसको हो जिसको ये शक हो कि आगे हुकूमत तब्दील हो जाएगी। हमेशा ये सोचता था, एक रंज रहता था कि खुदा ताला वो लोग कितने खुश नसीब थे जिसके सामने इमाम अली अलैहिस्सलाम ने कहा सलूनी पूछो क्या पूछना चाहते हो, मौला हम कितने बदकिस्मत हैं कि मौका हमें नहीं मिला, ये जिंदगी हमें नहीं मिली। किसी रात के आखिरी पहर ये सोच मेरे जहन में आई, मौला फरमाते थे पूछो इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। ये बात शायद मैं पहले कर चुका हूं, अगर किसी ने नहीं सुनी मैं दोबारा सुना रहा हूं। खुदा सलामत रखे उन हाथों को, उन कानों को, उन आंखों को जो कि हक की राह पे मौजूद है। रात के किसी आखिरी पहर ये बात मेरे जहन में आई, मौला फरमाते थे मुझसे पूछो, पूछो मदद लो इससे पहले मैं तुम्हारे दरमियान ना रहूं। आप किसी मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखते हैं, सुबह उठते ही उस मस्जिद में जाइएगा, मुफ्ती साहब से पूछिएगा, खतीब साहब से पूछिएगा, इमाम साहब से पूछिएगा, मौलवी साहब जब कयामत आएगी तो कुरान पाक की निशानी क्या है, कुरान पाक के हवाले से क्या निशानी है, पूछिएगा जरा उनसे कि जब कयामत बर्पा होगी, सूर फूंका जाएगा, तो कुरान पाक के हवाले से क्या निशानी है।

बस 5 मिनट और आप लोगों के मैसेजेस प्रोग्राम में आपके नाम शामिल कर लूँ, उसके बाद आपसे इजाज़त लूँगा और अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी कम ज़र्फ का मोहताज ना करे। अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें अभी इंस्टा पे, आपके जो मैसेजेस हैं मैं शामिल करके बस फिर आगे बढ़ूंगा, अल्लाह हाफिज़ करूंगा। ज़िशान नासिर लिखिए, मैं मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूज़र आईडी है ZEESHANNASIR26, ZEESHANNASIR26, ज़िशान नासिर 26। यहाँ पे जाइए, इंस्टा पे फॉलो करे करना चाहते हैं तो उसके बाद मैसेज भेज दीजिए, मैं आपके मैसेजेस अभी प्रोग्राम में शामिल करके उसके बाद फिर खुदा हाफिज़।

किंजा क्वीन हमारे साथ मौजूद हैं, सुंदस हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं सलामत रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। एले हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया एले आपका। फरवा रुबाब हमारे साथ हैं, तूबा चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, कह रही हैं मौला आपको सलामत रखे, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मोहम्मद मुनीब हमारे साथ हैं, सदा सलामत रहें और ऐसे ही जिक्र करते रहें, आमीन सुमामीन या इलाही रब्बिल आलमीन। जीनिया हमारे साथ हैं, मानी हमारे साथ मौजूद हैं, हिरा हुसैन हमारा साथ दे रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सफर हमारे साथ मौजूद हैं भाई, शुक्रिया। आज समझ आया कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब अपना गम हो तो मेरा गम याद कर लेना। हाजरा जाहिद हमारे साथ हैं, महानूर जिया हमारे साथ मौजूद हैं, अरीज तनवीर हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप पे मौला का, इतना करम है, इतना करम है माशाल्लाह के। बस दुआ करते रहें, शुक्र है अल्लाह पाक की जात का। नूरे हिरा हमारे साथ मौजूद हैं, किंजा क्वीन हमारे साथ हैं, मरी गर्ल हमारे साथ हैं, यमुना हमारे साथ हैं, आंखों का रूह का वजू कर लिया, जजाक अल्लाह सर, सदा इश्क सलामत रहे आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। माँ हुसैन की राजी हूँ आप पर, आमीन सुमामीन बिरहमतिका या रहमुल राहिमीन। अरमगान हमारे साथ हैं, आयजा खान हैं, सिमरन मलिक हैं, मौसिन जिशानियन हैं, वकार गोंदल हमारे साथ हैं, अहमद शाह हमारे साथ हैं, मिस्टिक क्वीन हमारे साथ हैं, गुलाम मौलाली हैं, जिशानियन आर्मी हैं, अलीशा हैं, अंसा शहराज हैं, अरम अली हैं, हुरिया मलिक हैं, मुस्कान हैं, डॉल क्यूट हैं, सैयदा हैं, साइलेंट रोज हैं, आलिया हैं, लाइबा इकराम हैं, मोहम्मद उसामा हैं, उसके साथ साथ आमना मुमताज।

इंशाल्लाह अजीज बहुत जल्द बशर्ते जिंदगी मैंने लाहौर का सफर करना है, मैं आप सब लोगों के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब लोगों की मुशतरका दुआएं करूंगा। खुदा जुमला अभी जहन में आया, मैं फिर आपके हवाले कर रहा हूँ। अमानतन है, मैं जिंदगी पे भरोसा अब इतना करता नहीं, इसलिए मैं कल तक के ऊपर बात रखता नहीं। अभी अमानतन आया, आपके हवाले कर रहा हूँ। मुसाइब का एक जुमला है, किसी छोटे से छोटे शहर गांव में भी चले जाए ना, उनके यहाँ वड वडेरे हों तो उनका अपना कब्रिस्तान होता है। ऐसा है या नहीं? आज के दौर में भी आप अपने गांव चले जाएं, किसी रिश्तेदार की तरफ चले जाएं, वो कहते हैं वो हमारा कब्रिस्तान है, वहाँ पे हमारी 4, 5, 6, 7, 8, 10 लोगों की इकट्ठे कब्रें हैं। जो सवाल करते हैं रोते क्यों हो, गिरिया किस बात का है, बस एक सवाल का जवाब दे दे। शहर रसूल अल्लाह का मदीना है ना, मक्का है ना, रसूल अल्लाह का शहर मक्का है ना, मदीना है ना, मुझे रसूल अल्लाह के बच्चों का कब्रिस्तान बता दे। कोई बेटा करबला में, कोई बेटी शाम में, कोई बेटी लाहौर में। हाय हाय हाय, पता हुसैन कितने करीम है, हर बंदा ज़ियारत को नहीं जा सकता, दिल तड़पता हो किसी का, क्या पता एक निशानी लाहौर में रख छोड़ी हो इस वास्ते। हाय हाय हाय हाय।

वहाँ खुदा मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ। कुछ ऐसी जिम्मेदारियां जो खुदा ताला डालता है मर्दों के ऊपर और जो कि मेरे मौला ने निभाई हैं, मेरे सरदार ने, मेरे आका ने निभाई हैं, उनकी सुन्नत है। अगर इन चीजों से मैं आजाद होता, वहां खुदा मैं आपको जंगलों, पहाड़ों, गलियों, कूचों में शुक्रिया या हुसैन सदाएं लगाता फिरता।

वे माया मेरा जी करदा, वे माया मेरा जी करदा, घर छड़ के मलंग हो जावा। वे माया मेरा जी करदा, ओ घर छड़ के मलंग हो।

थे मुल्ला ना पंडित ना जोशी, थप किताबा आसमानी हूँ, मरण ता पहलो मर गए बाहू, असा ता मतलब नू पाया हूँ।

कैसे उन जुमलों से बाहर निकलूं? मौला अपनी जूती सिलाई कर रहे हैं। शख्स आया का मौला जूती खरीद लीजिए, बहुत पुरानी हो गई है। कहा कितने की बिकेगी? अगर बेचूं तो क्या कीमत होगी इसकी? कहा मौला इसकी जो हालत है कीमत ना मिलने के बराबर मिलेगी। कहा तुम्हारी दुनिया की कीमत मेरी नजर में इतनी भी नहीं जितनी मेरी जूती की कीमत तुम्हारी नजर में है।

दुआ कीजिएगा मैं बाखैर आफियत इंशाल्लाह घर पहुंच जाऊं। तकरीबन 35-40 मिनट की ड्राइव है मेरे घर की। आपने तो बस हेडफोन उतारने हैं और सो जाना है, लेकिन सोना नहीं, नमाज पढ़ के सोना। बस अभी चंद ही लम्हात के बाद आधे घंटे में गालिबन अजान शुरू हो जाएगी, फजर का वक्त दाखिल हो जाएगा। सरबा सजूद होना, शुक्र अदा करना खुदा ताला का, इसलिए भी इबादत करना कि वो लायक इबादत है, इसलिए भी इबादत करना कि हुसैन जैसे ने उसको सजदा किया है। कितना बुलंद बाला है अल्लाह पाक। हुसैन ने बताया कि है कोई अल्लाह अकबर जिसके लिए मेरा अली अकबर भी कुर्बान है, और कहना शुक्रिया हुसैन, या अल्लाह पाक आपका शुक्रिया, आपने हुसैन जैसा इमाम दिया, हुसैन जैसा गैरतमंद इमाम दिया। बार क्या मैंने आपसे कहा कि इंशाल्लाह अजीज अगला प्रोग्राम जब होगा तो उसके बीच में डेवलपमेंट है, इंशाल्लाह आई विल बी ट्रैवलिंग टू लाहौर वेरी सून एंड मैं डेफिनेटली बीबी पाक दामना सरकार की दरगाह पे जरूर जाऊंगा। मैं हमेशा जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी लाहौर जाऊँ जरूर जाता हूँ। मैं बकायदा आप लोगों के लिए दुआ करूंगा, अगर कोई स्पेसिफिक दुआ है आप लोगों के लिए। बहुत सारी मस्तूरात ऐसी हैं जो कि जाना चाहती हैं, किसी भी वजह से नहीं जा पाती हैं, दूर है, गर्मी है, टाइम नहीं है, कोई महरम नहीं है साथ जाने वाला। आपकी कोई ऐसी दुआ है जो आप चाहते हैं कि बकायदा कोई वहां पर जाकर कर दे, तो मैं कासिद बनने के लिए तैयार हूँ। आप बेशक मेरे इंस्टा पे अपना नाम, अपनी दुआ लिख दीजिए, मैं आपका नाम बकायदा उस टाइम पे जाके इंस्टा खोल के आपका नाम लेकर आपकी वो दुआ वहां पर जरूर कह दूंगा। जगह पाक है, आपके दिल साफ होंगे। हाँ, मेरे जैसा गुनाहगार बंदा दुआ करेगा उसके थोड़े से मार्क्स शायद कट जाएं, मेरी जुबान से दुआ निकल रही होगी तो इसलिए उसके मार्क्स शायद कट जाएं, उसको जरा नजरअंदाज कर दीजिएगा। बाकी दरगाह बहुत बड़ी है, दरबार बहुत बड़ा है, मैं बकायदा वहां पे दुआ करूंगा। आप जरूर, अगर किसी की ऐसी ख्वाहिश है तो जरूर बताइएगा।

मैं आपको एक बात बताऊं, ये किस्मत किस्मत की भी बात है। अब असल में चूंकि मुझे बताया जा रहा है कि बाहर बहुत शदीद बारिश है, तो मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूं कि 10-12 मिनट रुक के चला जाऊं। आप बेफिक्र रहिए, मैं 5 मिनट में खत्म कर दूंगा। आई एम रियली सॉरी, मैं पिछले आधे घंटे से 5 मिनट कह रहा हूं, बस 5 मिनट में हम खत्म कर देंगे इसको, और यकीनी तौर पर फिर कुछ टाइम के बाद फजर का वक्त शुरू हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक किस्मत किस्मत की बात होती है। मेरा एक दोस्त था, आप हैरान होंगे, और मैं उससे कहता हूँ, मतलब जाहिर है आप किसी को अगर आपने किसी की सलाह भी करनी हो तो आप तजलील तो नहीं करते हैं उसकी ना। तो जब वो मेरे साथ बैठता है ना, तो मैं कहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं तेरी किस्मत पे रश करूँ या तेरी किस्मत पे मातम करूँ, मैं तेरी किस्मत की ख्वाहिश करूँ या मैं तेरी किस्मत के हवाले से खुदा से पनाह मांगूं। वो कहता है क्यों? मैं कहता हूँ मैं तुझे कैसे समझाऊं ये बात। वो बंदा इस वक्त इराक में एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रहा है, माशाल्लाह टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है। वो लोग होते हैं ना जिनको बहुत ज़्यादा मतलब इन डेप्थ ना जाने का शौक होता है चीज़ों में ना, बस वो कहते हैं बस ठीक है, ईद वाले दिन कुर्बानी कर ली, ईद की नमाज़ पढ़ ली, जुमा पढ़ लिया, नमाज पढ़ ली, कभी रोज़े आ गए रख ली। अब समझ रहे हैं मेरी बात ना, वो उनमें से है। तो काफ़ी पुराना जानता हूँ मैं उसको, तकरीबन 10-12 साल की रफाकत है, अक्सर मेरी बात इसी टॉपिक्स के ऊपर उससे होती है। तो खैर, इराक में एक बड़ी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी है जिसमें उसको जॉब मिली और बड़ी अच्छी फर्म में जॉब मिली, और नजफ उससे तकरीबन कोई गाड़ी पर 45 या 50 मिनट दूर है, और पिछले 6 साल से वो वहाँ पर जॉब करता है। ठीक है, अब यहां तक आप सुन रहे होंगे और आप कह रहे होंगे यार क्या कमाल किस्मत पाई है, वो आज तक 6 सालों में एक बार भी इमाम अली अलैहि सलाम की दरगाह पे नहीं गया। तो मैं उससे पूछता हूँ क्यों नहीं गए, कहते यार बस नहीं गया, क्या मतलब मैं दरगाहों पे नहीं जाता इतना, बाकी ये है कि बस ठीक है जॉब कर रहा हूँ, जाता हूँ वहां पे। वो माशाल्लाह इतनी अच्छी उसकी जॉब है कि वो हर महीने आता है। मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि लाहौर बाहर लोग बाहर जॉब करने जाते हैं तो 2 साल बाद आते हैं, साल बाद या 3 साल बाद। माशाल्लाह उसकी जॉब बहुत अच्छी है, तो वो तकरीबन हर महीने बाद या 1.5 महीने बाद वो आता है बच्चों के साथ छुट्टियां गुजारने। तो वो इतना फासला, मैं उससे अक्सर, चूंकि जब वो आया ना वापस, तो मैंने शौक होता है ना बंदे को, हमें तो मतलब वो कहते ना कि यार के दर का कुत्ता जो होता है वो भी इतना अजीज होता है। तो मैंने उससे पूछा कि यार नजफ कितना दूर है आपसे, कहते हैं यार जहाँ पे मेरा ऑफिस है और जहाँ पे मुझे अपार्टमेंट दिया है वहाँ से गाड़ी पे अगर जाओ कभी तो 50 मिनट लगेंगे, मैक्सिमम 50 मिनट, 1 घंटे से कम टाइम लगता। तो मैंने कहा कितनी बार गए हो, कहता है एक बार भी नहीं। हाय हाय।

मैं आज आपको एक राज की बात बताऊं, शायद पता नहीं मैंने आपसे कभी शेयर की हो या नहीं। मेरे पासपोर्ट के ऊपर इराक का वीजा लगता है, शायद ये आप सुन के हैरान भी हों। मुझे उसको देख के ही इतनी खुशी मिलती है कि कम से कम मेरे पास मौला के दर क्या इजाजतनामा है मेरे पासपोर्ट के ऊपर वीजा लगा हुआ है इराक का। मेरी जाने की हिम्मत नहीं होती, पता नहीं अब आप इसको समझ पाए ना समझ पाए मैं किस कैफियत से आपसे ये बात कह रहा हूं। देख के खुशी बड़ी होती है कि मौला के दर का इजाजतनामा है, मैं कभी भी टिकट लूं फ्लाई कर रहा हूं। हिम्मत नहीं पड़ती। तो खैर वो जिस दोस्त का मैं जिक्र कर रहा था उसने मुझे कहा यार आओ कभी इराक आओ, मैं सब कुछ है, अपार्टमेंट है अपना, मैं गाड़ी शाड़ी है, मैं घुमाऊंगा सारा, आ जाओ तुम कभी। तो मैंने उसे कहा यार मसला ये है कि मेरी तो शर्त है कि मैं आऊंगा तो फिर मैं तो नजफ लाजमी जाऊंगा मौला अली अलैहिस्सलाम की दरगाह पे, तो तुम जाओगे ना मेरे साथ। कहता यार चला तो जाऊंगा लेकिन तुम्हें वहां से फिर वापस कौन लेकर आएगा।

जुमला तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। इस जुमले को सुनना और सारी रात तुम्हारी रूह अगर रक्स ना करे, मैंने फिर अली की इमामत की गुलामी की नहीं। अभी जुमला जेन में आया, तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। शैतान का जुर्म क्या था, जल्दी बताओ, 5 मिनट है हमारे पास, जल्दी जल्दी जल्दी सोच का घोड़ा दौड़ाओ। शैतान का जुर्म क्या था?

शैतान का जुर्म क्या था? जल्दी जल्दी जल्दी सोच का घोड़ा दौड़ाओ। जो चीज तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ सारी रात रक्स करोगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने कहा कि आदम को सजदा नहीं किया। आदम को सजदा नहीं किया क्यों नहीं किया? वजह उसने ये बताई कि मैं आग से बना हूं, ये मट्टी से बना है। ऐसा ही है, गलत तो नहीं कह रहा। आप किसी मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखते हो? किसी भी मकातबे फिक्र से ताल्लुक रखते हो? कॉमन कॉमन गुफ्तगु पढ़ रहा हूं मैं, इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। अल्लाह पाक ने शैतान से कहा आदम को सजदा करो, उसने नहीं किया। वजह पूछी, वजह ये बताई कि मैं आग से बना, ये मट्टी से बना, मैं क्यों सजदा करूं इसे? मैं आग से बना हूं, ये मट्टी से बना है, मैं आग से बना हूं, ये मट्टी से बना है। जुमला अब तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, मैं नहीं जानता ये जुमला किस मकाम पर जाकर तुम्हें किस मकाम पर लेकर जाएगा, लेकिन जुमला कहने के बाद देखूंगा जरूर तुम्हें कि कौन कितना खुश नसीब है, किसके हिस्से में कितनी खैरात आई है। खुदा ने कहा सजदा कर, शैतान ने कहा, इबलीस ने कहा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेगा? मैं आग से बना हूं, ये मट्टी से बना है, इसलिए नहीं करूंगा। खुदा ने कहा जा तुरिंदा दरगाह है, कयामत तक तुझ पर मेरी लानत है, तू मर्दूद है। क्यों? सजदा किया था, चप्पे चप्पे पर उसने खुदा को सजदा किया था, मर्दूद क्यों हो गया? मिट्टी को हकीर जाना मिट्टी यानी के तुराब, मिट्टी यानी के तुराब। खुदा सलामत रखे और बुलंद हाथों को जो पहुंच गए हैं मिट्टी यानी के तुराब। तो खुदा जब सिर्फ तुराब, खुदा जब सिर्फ तुराब के मुनकर को बर्दाश्त नहीं करता, तो फिर अबू तुराब के मुनकर को कैसे

अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। फीडबैक देने के लिए इंस्टाग्राम पे जाइएगा, वहां पे लिखिएगा ज़ीशान नासिर, तो मैं आपको मिल जाऊंगा। एग्जैक्ट यूजर आईडी है ZEESHANNASIR26, ज़ीशान नासिर 26। फीडबैक करेगा इंतजार, जिंदगी ने सांसों ने, और सबसे बढ़कर अगर अल्लाह ने मौका दिया तो आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिए, पूकी ज़ीशान जा रहा है, अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान हमेशा हमेशा हमेशा जिंदाबाद।

या तुम्हारा सोने का घर हो या तुम आसमान पर चढ़ जाओ और हम तुम्हारे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक कि कोई किताब न लाओ जिसे हम पढ़ भी लें। कह दो कि मेरा परवरदिगार पाक है, मैं तो सिर्फ एक पैगाम पहुंचाने वाला इंसान हूँ।